मीडियम वेव 396.2 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। आज शनिवार है। शक संवत 1948 के श्रावण मास की पहली तिथि, तदनुसार 18 जुलाई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:56 हुए हैं। अब हमारी पहली सभा आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी जगदलपुर है। प्रातः के 6 बजने को है। हिंदी समाचार अब हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत।

0: más. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के जालंधर से 20 राज्यों के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से कल लोकार्पण किया। इन स्टेशनों का पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत लगभग 1,570 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। ये योजना दुनिया के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रमों में से एक है। विरासत भी विकास भी की भावना के अनुरूप विकसित इन स्टेशनों में स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला की झलक दिखाई देती है।
1: अब जैसे जालंधर है, यहाँ की पहचान खेलकूद से है, तो जालंधर कैंट स्टेशन में पंजाब की खेल परंपरा और लोक संस्कृति के दर्शन होते हैं। आप आनंदपुर साहब स्टेशन जाएंगे तो वहाँ तख्त श्री केशगढ़ साहब की झलक दिखाई देती है। कालका स्टेशन पर श्री काली मंदिर के दर्शन होंगे। यानी हमारे स्टेशन अब हमारी संस्कृति सभ्यता के प्रतीक भी हो गए हैं।
0: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने करतौली अम्बाला रेल सेवा और अमृत शेरहटा और वाराणसी के बीच संत रविदास एक्सप्रेस को झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण भारतीय रेल में तेजी से हो रहे परिवर्तन का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की प्राथमिकता लोगों की सेवा, उनके जीवन स्तर में सुधार और प्रगति के नए अवसर सृजित करना है। उन्होंने कहा कि सरकार नागरिक देव भव के मंत्र के साथ कार्य कर रही है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने हरियाणा के जींद से देश की पहली हाइड्रोजन संचालित यात्री रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाई। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। ये सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। सरकार ने सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में पेंशन संबंधी मुकदमों पर आयोजित द्वितीय राष्ट्रीय कार्यशाला के पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे। मंत्रालय ने कहा है कि ये कार्यशाला सभी हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करते हुए पेंशन संबंधी मुकदमों के प्रबंधन में सुधार करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे तथा पौधारोपण कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी में सुधार होगा, यात्रा समय में कमी और यातायात जाम में कमी आने के साथ साथ पुणे में औद्योगिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 25 जुलाई तक 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने कहा कि ये यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है। खेलों में हॉकी इंडिया आज से देशभर में कोचिंग और रेफरी शिक्षा कार्यशालाओं की शुरुआत करेगा। इसका उद्देश्य प्रशिक्षकों और तकनीकी अधिकारियों को आधुनिक प्रशिक्षण पद्धतियों और अंतर्राष्ट्रीय मानकों की जानकारी देना है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष डॉ दिलीप तिर्की ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में आयोजित ये कार्यशालाएं देश में हॉकी की मजबूत नींव तैयार करने और खेल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में आज सुबह पीवी सिंधु का सामना विश्व की चौथी वरीयता प्राप्त चीन की चेन युफेई से होगा। सिंधु कल अपने क्वार्टर फाइनल मैच में जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के हटने के बाद अंतिम 4 में पहुंचे। इसके परिणाम स्वरूप क्वार्टर फाइनल मुकाबला शुरू होने से पहले ही रद्द कर दिया गया, जिससे सिंधु को वॉकओवर मिल गया। फीफा विश्व कप में 3रे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीम आमने सामने होंगी। मियामी स्टेडियम में ये मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 पर खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 396.82 मीटर और FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये

जगदलपुर केंद्र है। प्रातः के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। सबसे पहले सुनते हैं देश वंदना। जब दिलों में देश बसता है तो भाषा, बोली, धर्म और प्रदेश की दूरियां अपने आप मिट जाती हैं। भारत की असली ताकत उसकी विविधता में छिपी एकता है, जो हर चुनौती के सामने अडिग होकर खड़ी

समूह स्वर में अभी आपने सुनी देश वंदना। भक्ति जहां अटल हो, सेवा वहां निष्काम हो, और विश्वास जहां अडिग हो, वहां पवन पुत्र हनुमान का आशीर्वाद अवश्य मिलता है। आइए श्रद्धा और आस्था के साथ सुनते हैं हनुमान चालीसा।

अनूप जलोटा के स्वर में आपने सुनी हनुमान चालीसा। आइए अब सुनते हैं सुमन कल्याणपुर के स्वर में ये भजन। जो सृष्टि का सृजन करता है वह स्वयं सृष्टि की सीमाओं में नहीं बंधता। उसका न कोई आकार है न कोई सीमा। वो केवल प्रेम, करुणा और विश्वास का अनंत स्वरूप है।

0: वंदना भक्ति संगीत का ये कार्यक्रम अभी आपने सुना। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:20 हुए हैं। लीजिए सुनिए आज का चिंतन।
1: कथा आती है कि एक बार नारद जी जब वैकुंठ गए तो उन्होंने देखा कि महाविष्णु चित्र बनाने में मग्न है तथा आसपास शिव ब्रह्मा इत्यादि अगणित देवता विष्णु का कृपा कटाक्ष पाने के लिए लालायित खड़े हैं, किंतु विष्णु हैं कि उन्हें चित्र बनाने से फुर्सत ही नहीं। चित्रलीन विष्णु ने नारद जी को भी नहीं देखा। विष्णु का यह व्यवहार नारद को बड़ा अपमानजनक प्रतीत हुआ। वे आवेश में विष्णु के समीप गए और पास ही खड़ी लक्ष्मी से उन्होंने पूछा, भगवान किसका चित्र बना रहे हैं? लक्ष्मी ने अपने स्वाभाविक भृकुटी चांचल्य के साथ कहा, अपने सबसे बड़े भक्त का, आपसे भी बड़े भक्त का, दोहरे अपमानित नारद।

जी ने पास जाकर देखा तो आश्चर्य से स्तब्ध रह गए। अचल ध्यानावस्थित विष्णु एक मैले कुचैले अर्धनग्न मनुष्य का चित्र बना रहे थे। नारद जी का चेहरा क्रोध से तमतमा गया, वे उल्टे पांव भूलोक की ओर चल पड़े। कई दिनों के भ्रमण के बाद उन्हें एक अत्यंत घिनौनी जगह पर पशु चर्मों से घिरा मार्ग दिखाई दिया, जो गंदगी और पसीने से लथपथ हो चमड़ों के ढेर को साफ कर रहा था। पहली दृष्टि में ही नारद जी ने पहचान लिया कि विष्णु इसी का चित्र

0: और कहा, देवर्षे, भक्त की उपासना का उपसंहार तो देख लीजिए, फिर जो करना हो कीजिए। अन्य चमड़ों के ढेर को समेटा, सबको एक गठरी में बांधा, फिर एक मैले कपड़े से सिर से पैर तक शरीर को पोंछा और गठरी के सामने झुककर विनय विभल वाणी में कहने लगा, प्रभो दया करना, कल भी मुझे ऐसी ही सुमति देना कि आज की तरह ही पसीना बहाकर तेरी दी हुई इस चाकरी में सारा दिन गुजार लूं। और नारद जी को विश्वास हो गया और विष्णु को क्यों सर्वाधिक प्रिय है, तो ईश्वर के बंदे होने का यह मतलब नहीं कि हम अपने कर्तव्य कर्मों की उपेक्षा कर संसार से पलायन कर जाएं, या कि आलसी बनकर पड़े रहें और दूसरों की कमाई रोटी तोड़ते रहें। जो ईमानदारी से अपना और अपने लोगों का पेट नहीं पाल सकता, वह ईश्वर की क्या बंदगी करेगा। जिसने दूसरे के लिए पसीना बहाना नहीं जाना, उसकी ईश्वर भक्ति का क्या तात्पर्य। बहुधा हमारी ईश्वर भक्ति एक दिखावा होती है। हमारा धर्म स्थानों में जाना या धर्म ग्रंथों का पाठ करना भी या तो दिखाने के लिए होता है अथवा व्यापार के लिए। यदि हम धार्मिक कहलाने वाले इन कृत्यों के द्वारा भौतिक लाभ ही पाना चाहें, तो हमारा ईश भजन भी व्यवसाय बन जाता है। कसौटी यह है कि हम ईश्वर को चाहते हैं या ईश्वर से चाहते हैं। सबसे बड़ा भक्त वह है जो ईश्वर को चाहता है और उसके बनाए जीवों की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहता है। वह तो यही कहता है, न तुहम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख तत्ताना प्राणिनाम आर्तिनाशनम। मुझे न तो राज्य की चाह है, न स्वर्ग की और न मुक्ति की। मैं तो बस शोक संतप्त प्राणियों के दुख कष्टों को मिटाना चाहता हूं।
1: अभी आपने सुना चिंतन, आलेख और स्वर था स्वामी आत्मानंद का। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। प्रातः के 6:25 हुए हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस का गायन, स्वर सुरेश वडेकर का और संगीत निर्देशक हैं सतीश भाटिया।

श्री रामचंद्र के ब्रह्म होने के संबंध में पूछे गए पार्वती के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान शिव उनकी इस शंका को लोक कल्याणकारी बताते हैं। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी उनके श्रवण रंध्र सांप के बिल के समान हैं। जिन्होंने संतों के दर्शन नहीं किए उनकी आंखें मोर पंख पर बनी आंख की नकली आकृतियों के समान हैं। जिसके हृदय में भगवत भक्ति नहीं वो प्राणी मृतक के समान है। जिस जिह्वा से श्री राम का गुणगान नहीं हुआ वो मेढक की जीभ के समान है। वो हृदय वज्र के समान कठोर होता है जो प्रभु चरित का गान सुनकर हर्षित नहीं होता। इन उक्तियों के साथ भगवान शिव ने पार्वती को राम कथा सुनाना आरंभ किया। गिरिराज किशोरी आदरपूर्वक श्रद्धा नथ हो पति के वचन सुनने लगी।

0: श्री रामचरितमानस का गायन अभी आपने सुना। स्वर सुरेश वडेकर का था और संगीत निर्देशक थे सतीश भाटिया। हम आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:35 हुए हैं। आइए सुनते हैं कृषि सामी की बेड़ा खाड़ा चौगोट।
1: करेला कमानी काजे लेहरा पानी कसन होतो रहे तो करेला चो कमानी काजे थामना बीती ओलिया लेहरा पानी नंगत रहे से। करेला चो बूटा मंचो एगुना है कि ये डेरा कमानी किसी मन ने अधिक शीत सहन करतो बीती होए से। मांतर वर्षा अधिक होरो ने उपजन ने घटी बले होए से। बेड़ा कमानी चो सजार नी बूता करेला कमानी काजे असन भूई की चीना बाना करतो रहे जे भूई खरिया रहो बलो ने अम्ल आरु नमक चो प्रतिशत सामान्य ले अधिक नी हो। भूई चो पीएच मान 6.5 ले 8.00 चो मंजी अरु माटी ने जीवांश चो प्रतिशत अधिक हो जेचोले बूटा मन के पर्याप्त मात्रा ने पोषक तत्व मिरुक सके दे। करला कमानी काजे बेड़ा जतना तो बेरा 200 लीटर बायोगैस स्लरी नहले 2000 लीटर संजीवक खत के बेड़ा ने डारून 4-5 दिन पाछे माटी उल्टा तो नांगर ने जोतून देतो राय अरु एक हफ्ता काजे बेड़ा के खुला छाड़ून देतो राय। इचोले 3-4 हार लगड़ा मारून बेड़ा के सम बनाउन 3-3 फीट जो फरक ने 1 फीट लम और 2 फीट ओसार खुदरा बनान सफाए खुदरा मन ने 500 ग्राम वर्मी कंपोस्ट आरु 50 ग्राम कापर सल्फेट पाउडर आरु 200 ग्राम लाखड़ी मिसाउन खुदरा मन के ढाकून देते रहे और बेड़ा ने पानी छपान देते रहे। पानी दखालो 5-6 दिन पाछे करेला बीचा खुदरा मन ने मंडाते जाते रहे। बीचा मंडातो काजे गोटो खुदरा ने 4-5 ठन बीचा मंडातो रहे। करेला चो नंगत किसी मन बले होय से तो एक बले सुना। पहला है कोयम्बटूर लौंग, दूसरा है कल्याणपुर बारहमासी, असने तीसर किसीम है हिसार सिलेक्शन, असने चौथा है अर्का हरित, असने पांचवा किसीम है पूसा विशेष। दादा दीदी मन कहीं बले कमानी कर लो ने हुनके हाम के नंगत दखा रखा बले करुक लागे से। तो हम जानो कि करेला ने पानी आरु मिंजानी कसन करतो रहे। दादा दीदी मन करेला चो कमानी ने पानी चो खूबे प्रभाव दखा दाए से। ऐका जे समय समय ने पानी देते रहतो रहे। करेला कमानी घाम आरु बरसा दोनों समय ने करतो होए से। दादा दीदी मन जेचो लागून ये फसल ने लाटा बूटा बले झपके जोटून जाए से तो समय समय ने ये फसल ने निंजानी करते रहतो रहे। असने नगद बेड़ा के जतना तिरलो ने फसल थाने फर फूल खूबे नगद ऐसे। करला कमानी काजे नगद कुदरती खत बले बनाओ सकास ते कुदरती खत बना तो काजे दादा दीदी मन बीचा मंडालो 3 सप्ताह पाछे बूटा ने 3-4 ठन पाना दखा दिलो बेरा 2000 लीटर बायोगैस स्लरी नहले 2000 लीटर संजीवक खत नहले फिर 40 किलो गोबर खत ले बनलो जीवामृत खत के 1 एकड़ हिसाब धरून बेड़ा ने देउन दियास। करला कमानी काजे नंगत कुदरती खत बले दादा दीदी तुम्ही मन बनावकला सकास। बीचा मंडालो 3 सप्ताह पाछे बूटा ने 3-4 ठन पाना दखा दिलो ने 2000 लीटर बायोगैस स्लरी नहले 2000 लीटर संजीवक खत नहले फिर 40 किलो गोबर खत ले बनलो जीवामृत खत के 1 एकड़ हिसाब धरून बेड़ा ने देउन दियास। और दूसरा

0: लीटर कीट रक्षक के 40 लीटर पानी ने मिशन हफ्ता ने 2 दिन छिचुन देत रहा है। ए रोग के मरला तो काजे पतंजलि निम्बादी कीट रक्षक खुबे नगद रहे से। दादा दीदी मन करेला कमानी थाने रोग मन बले हुए से और ये गोटक रोग आए पाउडरी मिल्ड्यू रोग। ए रोग करेला ने एरी साइफी सिकोरी सीएटम चो कारण ने होए से। ये रोग कवक चो कारण ने होए से। ये रोग के मरला तो काजे 5 लीटर टरका मही पानी ने 2 लीटर गौमूत्र बलो ने गाय चो पिसाब और 40 लीटर पानी मिसाउन ये घोल चो छिड़काव करते रहतो रहे। सर लगा 3 हफ्ता ये ओखत के छिचते रहलो ने ए रोग ले करेला फसल के बचाव के लाए सका से। असने गोटोक और रोग होए से करेला थाने ये आए एंथ्रेक्वनोज रोग। करेला कमाने ने ये रोग सबले ज्यादा दखा दे से। ये रोग ले बूटा मन चो पाना ने करिया छापा हुन जाए से। ये रोग के मरला तो काजे एकड़ हिसाब ने 10 लीटर गौमूत्र ने 4 किलोग्राम आड़ू चो पाना और 4 किलोग्राम नीम पाना संगे 2 किलोग्राम लसुन के उखरौन भाती ये चो पानी के ठंडा करून 40 लीटर पानी संगे मिसाउन भाती फसल ने छिड़काव कर ले। फसल ले ये रोग के एकदम नगद होकला सके।
1: कृषि समिति बेड़ा खाड़ा चौगोठ का प्रसारण अभी आपने सुना। ये आकाशवाणी जगदलपुर है। प्रातः के 6:40 हुए हैं। लोकवाद्य धुनों के कार्यक्रम हुलहुली में लीजिए सुनिए राउत गिरली पाड़। वादक कलाकार हैं धर्मू और साथी।

धर्मों और साथियों का बजाया राउत गिरलीपाड़ अभी आपने सुना। कार्यक्रम था हुलहुली, आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। प्रातः के 6:50 हुए हैं। कार्यक्रम विवरण में अब सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित और अनुप्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। आज रात 9:30 पर कार्यक्रम चित्र भारती हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। डॉक्टर की सलाह सुबह 8:30 पर और सुबह 9:00 बातों बातों में, ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी रायपुर से रिले किए जाएंगे। अब से कुछ देर बाद सुबह 7:05 पर होगा कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर। आकर्षण होंगे कहानी पाठ, जिसमें सुनिएगा दीक्षा पांडे की कहानी मिट्टी की खुशबू, और साथ ही होगी मधुर संगीत की मधुरिमा। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा सुबह 9:15 पर। एक ही फिल्म से सुबह 9:30 पर इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे मोहरा फिल्म के कुछ गीत और उससे जुड़ी जानकारी। सुबह 10:00 आजीचू सगा कार्यक्रम में सुनिएगा डॉक्टर जयमती कश्यप से ली गई भेंटवार्ता। भेंट करता होंगे बलवीर सिंह कच्छ। लोकगीतों के कार्यक्रम गुड़दुम में सुबह 10:30 पर हम आपको सुनवाएंगे राजकिशोर नाग और साथियों की आवाज में छत्तीसगढ़ी गीत। सुबह 11:00 हम पेश करेंगे कार्यक्रम एक ही कलाकार। आज की हमारी कलाकार होंगी अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा। गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम गुलदस्ता आप सुन सकते हैं सुबह 11:30 पर। दिन के 12:00 प्रस्तुत किया जाएगा फरमाइशी लोकगीतों का फोन इन कार्यक्रम लोकरस। प्रस्तुति होगी संपत राम नाग की और संयोजन होगा चंद्र ऋषि ठाकुर का। कृषि सामी की बेड़ा खाड़ा चौगोठ का पुनः प्रसारण किया जाएगा दिन के 1:05 पर। प्रतिदिन दोपहर 1:10 पर आप सुनते हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम।

श्रोता सुमन। प्रायोजित कार्यक्रम हमारे मेहमान प्रसारित किया जाएगा दिन के 2:30 पर। दोपहर 3 से FM बैंड पर विविध भारती के कार्यक्रम जारी रहेंगे। हमारी सांध्यकालीन सभा में शाम 5:05 पर सुनिएगा देशभक्ति गीत। युवा श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी सुना जाएगा शाम 5:10 पर। ये कार्यक्रम आज हिंदी भाषा में होगा। लोकगीत का आनंद आप ले सकते हैं आज शाम 6:35 पर। इसमें सुनिएगा गेलमणि देवी और साथियों की आवाज में हल्बी लोकगीत। दैनिक कार्यक्रम बस्तर के स्वर शाम 7:00। शाम 7:30 पर हम आपको सुनवाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम फोन इन किसानवाणी। जोनी उजर लोकगीतों के इस कार्यक्रम में रात 8:00 आप सुन सकते हैं हल्बी लोकगीत। गायक कलाकार होंगे सोना दई और साथी। पिलामन का जिगोट हल्बी बोली में इस कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा आज रात 8:30 पर। इसमें सुनिएगा ईश्वर चंद विद्यासागर के बारे में भरत कुमार गंगादित्य की प्रस्तुति। आज रात 9:15 पर हल्बी बोली में प्रस्तुत किया जाएगा कार्यक्रम आमचो रान आमचो जीवना, जिसमें आप सुन सकेंगे रूपचंद नाग से ली गई भेंट वार्ता। भेंट करता होंगे बलबीर सिंह कच्छ। आदिवासी लोकवाद्य धुनों के कार्यक्रम पाड़ में रात 10:00 सुनिएगा लगीन पाड़ और खेल पाड़। वादक कलाकार होंगे विकास बघेल और साथी।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के जालंधर से कल 20 राज्यों के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। इन स्टेशनों का पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत लगभग 1,570 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। ये योजना दुनिया के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रमों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विरासत भी विकास भी की भावना के अनुरूप विकसित इन स्टेशनों में स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला की झलक दिखाई देती है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने करतौली अम्बाला रेल सेवा और अमृतसर छेहरटा और वाराणसी के बीच संत रविदास एक्सप्रेस को झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण भारतीय रेल में तेजी से हो रहे परिवर्तन का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार नागरिक देवो भव के मंत्र के साथ कार्य कर रही है।
1: हम नागरिक देवो भव इस मंत्र पर चल रहे हैं। गरीब हो, मिडिल क्लास हो, ऐसे हर परिवार को बेस्ट से बेस्ट सुविधा मिले, ये हमारा प्रयास है। और नागरिक देवो भव का ये भाव हमारे काम में दिखता है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने हरियाणा के जींद से देश की पहली हाइड्रोजन संचालित यात्री रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाई। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। ये सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। सरकार ने सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में पेंशन संबंधी मुकदमों पर आयोजित द्वितीय राष्ट्रीय कार्यशाला के पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि ये कार्यशाला सभी हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय से पेंशन संबंधी मुकदमों के प्रबंधन में सुधार करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 25 जुलाई तक 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने कहा कि ये यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है। पनामा के विदेश मंत्री जेवियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचावास्केज 5 दिन की यात्रा पर कल भारत आ रहे हैं। वे सोमवार को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात करेंगे और हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से भी मिलेंगे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार एजेंसी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी अशांति पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने प्रदर्शनकारियों की मौत की त्वरित, निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है। श्री तुर्क ने पाकिस्तानी अधिकारियों से संयम बरतने, लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने और हिंसा की घटनाओं के लिए जवाबदेही तय करने का आग्रह किया है। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज सुबह पीवी सिंधु का सामना विश्व की चौथी वरीयता प्राप्त चीन की चेन युफेई से होगा। सिंधु कल अपने क्वार्टर फाइनल मैच में जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के हटने के बाद सेमीफाइनल में पहुंची हैं। और फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीम आमने सामने होंगी। मियामी स्टेडियम में ये मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 पर शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज़, FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। प्रातः के 7:00

बारिश की रिमझिम बूंदें प्रकृति के संगीत का एहसास कराती हैं। हरियाली से सजी वादियां, ठंडी हवाएं और पक्षियों का मधुर कलरव इस सुबह को और भी खास बना रहे हैं। आइए इस खूबसूरत मौसम का आनंद लेते हुए अपने दिन की शुरुआत करते हैं सकारात्मक विचारों और मधुर गीतों के साथ। मैं आपकी रेडियो साथी आशा दुल्हानी सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूँ कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर में।

0: माटी की सौंधी खुशबू के साथ,
1: पवन के ठंडे झोंके के साथ
0: हिलोरे लेगी
1: आकाश की वाणी।
0: आकाशवाणी
2: विज्ञापन के लिए संपर्क करें आकाशवाणी जगदलपुर आकर,
0: या फोन करें 222150 या 222400,
1: 222150 या 222400।
3: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
4: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
5: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। डायल कीजिए हमारा टोल फ्री नंबर 1512।
6: श्रोताओं, आज 18 जुलाई है, एक ऐसा दिन जो पूरी दुनिया में नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इतिहास में कई नेता हुए, लेकिन मदीबा यानी नेल्सन मंडेला जैसा कोई दूसरा नहीं हुआ। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्होंने इंसानियत, बराबरी और आज़ादी के लिए अपने जीवन के पूरे 67 साल दांव पर लगा दिए। उनका जन्म आज ही के दिन सन 1918 को दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। एक छोटे से गांव से मंडेला का ये सफ़र दमन और अन्याय के खिलाफ शुरू हुआ। उन्होंने रंगभेद की क्रूर जंजीरों को तोड़ने के लिए आवाज़ उठाई, जिसके बदले उन्हें मिली जेल की वो काल कोठरियां जहां उन्होंने अपने जीवन के 27 साल काट दिए। साल 1993 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया और सन 1994 में वे दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। नवंबर सन 2009 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने उनके योगदान के सम्मान में उनके जन्मदिन को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया और 67 साल तक मंडेला के इस आंदोलन से जुड़े होने के उपलक्ष्य में लोगों से दिन के 24 घंटों में से 67 मिनट दूसरों की मदद करने में दान देने का आग्रह किया। दक्षिण अफ्रीका के लोग उन्हें प्यार और सम्मान से मदीबा कहकर बुलाते थे। दरअसल मदीबा दक्षिण अफ्रीका के एक कबीले का नाम है जिससे मंडेला का परिवार ताल्लुक रखता था। वहां बुजुर्गों को कबीले के नाम से पुकारना एक सम्मान माना जाता था। नेल्सन मंडेला के लिए ये नाम सिर्फ एक पुकार नहीं, बल्कि उनकी जड़ों, उनकी संस्कृति और पूरे देश के लिए एक पिता समान होने का प्रतीक बन गया। महात्मा गांधी के विचारों को अपना आदर्श मानने वाले मदीबा अक्सर कहते थे कि जब तक कोई काम पूरा न हो जाए तब तक वो असंभव ही लगता है। साल 2013 में मदीबा इस दुनिया से विदा हो गए, लेकिन उनके विचार आज भी जीवित हैं। श्रोताओं, आज मदीबा के उन 67 सालों के संघर्ष को सलाम करते हुए हम भी अपने जीवन के 67 मिनट क्यों ना किसी की भलाई के लिए समर्पित करें। क्योंकि जब हम किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं, किसी गिरते हुए को सहारा देते हैं, तो हमारे भी

भीतर भी एक नई उम्मीद, एक नया हौसला जागता है। जिंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों न लगे, अगर दिल में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो हर राह आसान हो जाती है। मदीमा ने भी तो यही सिखाया कि उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। तो चलिए अपने दिलों में उम्मीद के दिए जलाते हैं, हौसलों को नए पंख देते हैं और खुद से वादा करते हैं कि हाँ, हम बदल सकते हैं इस दुनिया को। इसी खूबसूरत सोच के साथ आइए सुनते हैं ये गीत जो आपके दिलों में भी उम्मीदों की नई किरण जगा देगा।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं कहानी की ओर। आज की कहानी का शीर्षक है मिट्टी की खुशबू। प्रस्तुतकर्ता हैं दीक्षा पांडे।
1: नमस्कार, मैं दीक्षा सभी के सामने एक छोटी सी कहानी प्रस्तुत कर रही हूँ। एक छोटे से गांव राजकोट में विक्रम नाम का एक लड़का रहता था, जो अभी मुश्किल से 22 वर्ष का एक युवा था। इस छोटे से गांव में उसने पढ़ाई की। वह उसका सपना था बड़े शहर जाने और कुछ बहुत बड़ा करने की। अजीब सी तड़प थी गांव के लोग, जिसमें से विक्रम के पिता रामशंकर भी गांव से जुड़े रहने वाले लोग थे। गांव की सादगी में जो आनंद महसूस करते थे, वह उन्हें शहरों में अच्छा नहीं लगता था। वे बारिश का इंतजार करते, फसल लगाते और उसी में अपनी जिंदगी का सुख खोज लेते। किंतु विक्रम के सपने बड़े थे, उसकी नजरें शहर पर थी, जहां चकाचौंध बड़ी बड़ी इमारतें थी और जहां सपने साकार किए जाते थे। रामशंकर हमेशा विक्रम से कहते, बेटा, मिट्टी से जुड़कर रहना चाहिए। जिस मिट्टी में हमने जन्म लिया, वह हमें कभी भूखा सोने नहीं देती। शहर की चकाचौंध

छूटी होती है। लेकिन विक्रम के मन में एक ही बात थी, उसे अपने सपने को पंख देने थे। उसने अपनी पढ़ाई एक छोटे गांव में रहकर किया, जिसमें उसे कंप्यूटर और तकनीकी की थोड़ी समझ मिली। वह अपने गांव के लोगों के कुछ अलग करने की चाह रखता था, जिससे न केवल उसका नाम हो बल्कि पूरे गांव का नाम हो। वह अक्सर गांव के चौराहे पर बैठकर अपने लैपटॉप पर कुछ काम करता रहता था, नए बिजनेस के बारे में सोचता था। गांव के बुजुर्ग उसे देखकर मुस्कुराते और कहते, यह लड़का अजीब है, न जाने दिन भर वह उस मशीन पर क्या करते रहता है। इस मशीन में क्या यह खेती करेगा? लेकिन विक्रम सभी की बातों को अनसुना कर देता। उसका लक्ष्य बड़ा था, वह एक ऐसा कार्य करना चाहता था जिससे गांव के किसान व अन्य मजदूरों को सीधे बड़े शहरों के बाजारों से जोड़ना चाहता था, ताकि उनको उनकी मेहनत का सही दाम मिल सके। एक दिन विक्रम ने अपना बैग तैयार किया और उसके पिता के लाख मना करने के बावजूद वह शहर के लिए निकल पड़ा। शहर की विशाल सड़कें, तेज रफ्तार गाड़ियां और लोगों की भीड़ देखकर विक्रम थोड़े देर के लिए सहम सा गया और उसने अपने लिए फैसले पर विचार किया और मन ही मन यह कह रहा था कि क्या मैंने गलत फैसला ले लिया। फिर कुछ देर बाद उसने सोचा, नहीं, मेरे सपने को किसी भी प्रकार से साकार करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। विक्रम ने एक छोटे से किराए का मकान लिया जो एक तंग गली में था। कमरा इतना छोटा था कि वहाँ सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुँच पाती थी। अगले दिन से ही राघव ने अपनी नौकरी की तलाश और अपने प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया। वह सुबह सुबह उठता, अपने जूता पहनता और अलग अलग कंपनियों के दफ्तरों के चक्कर काटता। हर जगह उसे एक ही जवाब मिलता, अनुभव की कमी है। वे कहते, यह कोई व्यवहारिक मॉडल नहीं है। दिन बीतते गए और विक्रम के पास जो थोड़े बहुत पैसे थे वह धीरे धीरे खत्म होने लगे। कई रातें उसने भूखे पेट ही गुजार दी। शहर की बेरहमी उसे हर रोज एक नया सबक सिखा रही थी। वह अपने पिता की कही हुई बातों को याद करता, मिट्टी की खुशबू शहर में नहीं मिलती। कई बार उसका मन करता कि वह सब कुछ छोड़कर वापस अपने गांव लौट जाए, जहां कम से कम दो वक्त की रोटी और सुकून तो था। लेकिन विक्रम ने हार नहीं मानी। उसने एक छोटी सी कैफे में रात की शिफ्ट में वेटर की नौकरी कर ली, ताकि दिन में वह अपने प्रोजेक्ट गांव से शहर को जोड़ना नाम पर काम कर सके। वह दिन भर लाइब्रेरी में बैठता, इंटरनेट का इस्तेमाल करता और अपने ऐप के डिजाइन को बेहतर बनाता। कैफे में काम करते हुए उसे कई तरह के लोग मिलते। कुछ लोग बहुत रूड होते, जो वेटर से ऐसे बात करते जैसे वे कोई नौकर हैं। लेकिन विक्रम मुस्कुराकर उनकी बातों को सुनता और अपना काम करता। धीरे धीरे समय बीतता गया और फिर एक रात विक्रम की मुलाकात एक बुजुर्ग व्यक्ति से हुई। विक्रम ने उन्हें देखा तो वे बहुत ही शांत और सुलझे हुए लग रहे थे। विक्रम ने उन्हें कॉफी दी। बुजुर्ग ने विक्रम के चेहरे को देखा तो विक्रम के चेहरे पर एक अजीब सी थकान देखी और कहा, बेटा, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत मेहनती हो। क्या तुम सिर्फ वेटर का ही काम

करते हैं। विक्रम ने थोड़ी झिझक के साथ अपने प्रोजेक्ट के आइडिया के बारे में बताया। बुजुर्ग ने बहुत ध्यान से विक्रम की बात को सुनी और उसके विचारों की सराहना की। उन्होंने कहा, तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है, लेकिन इसे लागू करने के लिए तुम्हें एक मजबूत नेटवर्किंग और सही लोगों तक पहुंचने की जरूरत है। उस बुजुर्ग व्यक्ति की एक बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी के रिटायर डायरेक्टर थे। उन्होंने विक्रम को अपना कार्ड दिया और कहा, कल सुबह तुम मेरे ऑफिस आना, हम तुम्हारे इस प्रोजेक्ट पर चर्चा करेंगे। अगले दिन विक्रम ने ऑफिस पहुंचा। विक्रम ने उस ऑफिस को देखते ही ऐसा लगा मानो वह ऑफिस किसी सपने जैसा था। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने विक्रम के प्रोजेक्ट का पूरा प्रेजेंटेशन देखा और कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यह सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, यह एक सामाजिक बदलाव का माध्यम भी है। बुजुर्ग व्यक्ति ने विक्रम की मदद के लिए अपने कुछ सेविंग इन्वेस्ट की और एक छोटा सा ऑफिस स्पेस भी दिया। विक्रम की मेहनत अब रंग लाने लगी। उसने अपने सपने को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दी। उसने एक टीम बनाई और गांव से शहर को जोड़ना एक बड़ी सफलता बन गया। पहले महीने में ही उन्होंने गांव के 50 बुनकरों को जोड़ा और उनके द्वारा बनाई गई साड़ियों और हस्तशिल्प को सीधे शहर के बुटीक तक पहुंचाया। बिचौलियों के हटने से बुनकरों को उनकी मेहनत का पूरा पैसा मिलने लगा और शहर के लोगों को असली और शुद्ध उत्पाद मिलने लगा। विक्रम ने 6 महीने के भीतर ही गांव को शहर से जोड़ना प्रोजेक्ट का एक बड़ी सफलता बन गई। कई निवेशकों का अब विक्रम की कंपनी में पैसा लगाने के लिए तैयार हो गए। अब विक्रम को युवा उद्यमी के रूप में बहुत से पुरस्कार भी मिले। न्यूज़पेपर और टीवी चैनल्स पर उनके इंटरव्यू आने लगे। शहर की बड़ी बड़ी कंपनियों ने उसके साथ काम करने की इच्छा जताई, लेकिन इतनी सफलता के बाद भी विक्रम के मन में एक ही खालीपन था। जब वह रात को अपनी खिड़की से शहर के चमचमाते हुए लाइट देखता है तो उसे अपने गांव की याद आती है। वह गांव के गली मोहल्ले, माता पिता, दोस्तों की बहुत याद करता था, किंतु सपने को साकार करने के लिए विक्रम ने यह कदम उठाया। वह भीड़ में अकेला महसूस करता था। उसे याद आता है कि उसने अपना यह सफर क्यों शुरू किया था, ताकि वह अपने गांव के लोगों की जिंदगी में बदलाव कर सके। विक्रम को यह लगता है कि पूरा विश्व परिवर्तित हो रहा है, तो मेरा गांव क्यों नहीं। यह सभी बातें विक्रम के दिमाग में घूमती रहती थी। एक दिन उसने अपने उस बुजुर्ग व्यक्ति से बात की और कहा, सर अब समय आ गया है कि मैं अपने गांव जाऊं। इस प्रोजेक्ट का ऑफिस अब गांव में ही रहेगा। वे बुजुर्ग व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी सोच हमेशा से अलग रही है। जाओ विक्रम, अपनी मिट्टी को वह सब कुछ दो जो वह सबके लायक है। विक्रम ने अपनी टीम के साथ अपने गांव के लिए निकल गए। जब वह गांव की सीमा में प्रवेश किया तो उसकी आंखें भर आई। गांव का वही पुराना माहौल था, लेकिन अब लोगों के चेहरे पे एक अजीब सी चमक थी। उसके पिता दरवाजे पर खड़े थे। विक्रम ने गाड़ी रोकी और सीधे अपने पिता के चरणों में झुक गया और पिता ने विक्रम को देखकर अपने

गले से लगा लिया। पिताजी ने विक्रम को देखकर उनके मन में प्रसन्नता का भाव दिख रहा था। फिर विक्रम ने अपने गांव में एक बड़ा ऑफिस सेंटर बनवाया, जहां से गांव को शहर से जोड़ना प्रोजेक्ट का सारा काम संचालित होता था। उसने गांव के युवा को प्रशिक्षित किया कि कैसे वे तकनीकी का इस्तेमाल कर सके। अब गांव के किसान भी ऑनलाइन अपने ऑर्गेनिक उत्पादों को शहर ले जाकर उनकी बिक्री करने लगे।

0: कहता है, विक्रम ने अपना सपना पूरा किया और आसपास के गांवों के लोगों के आर्थिक स्थिति को सुधार दिया। सफलता का रास्ता हमेशा फूलों से भरा नहीं होता। विक्रम की कंपनियों को भी बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक बार कुछ एक कंपनियों ने विक्रम की ऐप की नकल करने की कोशिश की और मार्केट में अपने दाम इतने गिरा दिए कि विक्रम के प्रोजेक्ट उस पर काम आना मुश्किल हो गया। गांव के लोग डर गए। उन्होंने विक्रम से कहा, बेटा अब हमारा क्या होगा, इन बड़ी कंपनियों ने हमें नुकसान में डाल दिया, अब हमारा क्या होगा। गांव के लोगों के बात से थोड़ा विक्रम भी सहम गया, किंतु उसने सोचा, यदि मैं ही कमजोर हो जाऊंगा तो मेरे गांव के लोगों का क्या होगा। विक्रम ने अपनी सूझबूझ व धैर्य से काम लिया। उसने शहर के ग्राहकों के साथ बात किया व जो वह गांव से सामान खरीदते हैं वह असली व सीधे कारीगरों के हाथ से आता है, जबकि बड़ी कंपनी केवल अपनी मुनाफा देखते हैं। विक्रम ने लोगों से कहा कि आज जो आप जो खरीदते हैं उससे गांव के एक गरीब परिवार के जीवन चलती है। ग्राहकों ने विक्रम की बातों को सुना व कुछ देर विचार करने के बाद विक्रम का साथ दिया। वे बड़ी कंपनियों के सस्ते व नकली सामान असली और पारंपरिक उत्पादकों की प्राथमिकता देने लगे। अब विक्रम का गांव एक आदर्श गांव बन चुका। यहां पक्की सड़कें थी, हर घर में बिजली थी और इंटरनेट की सुविधा थी, लेकिन इसके साथ ही साथ गांव की पारंपरिक संस्कृति, वो मिट्टी की खुशबू और वे आत्मीयता वैसी ही बनी हुई। विक्रम के प्रोजेक्ट ने अब देश के कई विश्वविद्यालयों में एक केस स्टडी के रूप में पढ़ाया जाता था। विक्रम को कई बार सरकार द्वारा सम्मानित भी किया गया। इन सब उपलब्धियों के बीच विक्रम आज भी वही जमीन से जुड़ा हुआ है। वह शाम को अपने खेत जाता, मिट्टी में अपने हाथ सानता और नीम के पेड़ के नीचे बैठकर चाय पीता। विक्रम की यह यात्रा नहीं थी, लेकिन उसके हौसले बुलंद थे। विक्रम यह जानता था कि एक बेहतर समाज के निर्माण के लिए शिक्षा और तकनीकी का सही उपयोग जरूरी है। उसने अपनी सफलता को अपने सिर पर चढ़ने नहीं दिया। वह हमेशा अपने पिता के उस मंत्र को याद रखता था, मिट्टी से जुड़े रहो। उसने अपने गांव को ऐसा स्थान बना दिया जहां आज सब कुछ उपलब्ध था।
1: मिट्टी की खुशबू, दीक्षा पांडे की ये कहानी अभी आपने सुनी। नमस्कार जगदलपुर में। आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं कुछ संदेश।
2: जीएसटी काउंसिल ने अपनी 56वीं बैठक में हेल्थ केयर की चीजों को सस्ता कर देश की बड़ी आबादी को राहत दी है। डायबिटीज कैपिटल कहे जाने वाले भारत के शुगर मरीजों के लिए रोजाना की जरूरत बन चुके ग्लूकोमीटर और स्ट्रिप्स पर जीएसटी की दरों को घटा दिया गया है। नजर के चश्मों को भी सस्ता किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि ब्रेस्ट कैंसर सहित अस्थमा के एडवांस इलाज में काम आने वाली कई दवाओं, थर्मामीटर और डायग्नोस्टिक किट्स पर भी टैक्स की दर कम की गई है।

0: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल, अब हर शनिवार को शाम 7:30 बजे से 8 बजे तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 बजे से 4 बजे तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 07782222666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज, आपकी कहानी, आपके खेतों की जुबानी।
1: विविध भारती के खजाने से हम आपके लिए लाते हैं अनमोल कार्यक्रम।
2: फौजी भाइयों की खिदमत में आपका खादिम नौशाद आदाब पेश करता है, कबूल फरमाइए।

0: 5102 या लॉग ऑन करें csuair.org.in। विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
1: श्रोताओ, आप सुन रहे हैं नमस्कार जगदलपुर। आज की इस डिजिटल दुनिया में हम 2400 घंटे कनेक्टेड हैं। फोन पर हजारों नोटिफिकेशंस हैं, सोशल मीडिया पर सैकड़ों दोस्त हैं और हर वक्त हमारे पास कोई न कोई भीड़ मौजूद है। लेकिन क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि इस भरी भीड़ में भी या रात के सन्नाटे में अचानक एक अजीब सा खालीपन महसूस होने लगे, ऐसा लगे कि सब कुछ होकर भी कुछ अधूरा है और हम इस खालीपन से इतना डरते हैं कि इसे भरने के लिए तुरंत फोन उठा लेते हैं, किसी को कॉल लगा देते हैं या बस बिना वजह रील्स स्क्रॉल करने लगते हैं। हम अकेले होने से भागते हैं, पर जानते हैं अकेला होना कोई सजा नहीं है। अंग्रेजी में एक कमाल की बात कही गई है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लोनलीनेस एंड सॉलिट्यूड। लोनलीनेस का मतलब है उदासी, ये सोचना कि मेरा कोई नहीं है। लेकिन सॉलिट्यूड एक कला है, द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन। इसका मतलब है खुद की कंपनी में महफूज और खुश रहना। जब आप अकेले होते हैं तब आप किसी बाहरी शोर से नहीं बल्कि इस कायनात के सबसे अनमोल इंसान से मिलते हैं, और वो इंसान कोई और नहीं बल्कि आप खुद हैं। खुद से दोस्ती करना एक जादुई एहसास है। कभी किसी शाम बिना मोबाइल के सिर्फ अपने लिए एक कप चाय बनाइए और खुद से गुफ्तगू कीजिए। जब आप खुद से प्यार करना सीख जाते हैं ना, तो आप दुनिया के सबसे आज़ाद और अमीर इंसान बन जाते हैं। फिर आपकी खुशी किसी और के आने या जाने की मोहताज नहीं रहती, आप खुद में ही एक मुकम्मल दुनिया बन जाते हैं। तो चलिए श्रोताओं, आज दुनिया के इस शोर को थोड़ा म्यूट करते हैं, खुद का हाथ थामते हैं, अपनी ही आंखों में देखकर मुस्कुराते हैं और पूरे हक से खुद से कहते हैं कि मैं अपने साथ बहुत खुश हूं। खुद से इश्क कर लिया है हमने, अब किसी और की तलाश नहीं। जो सुकून अपनी रूह में मिला वो किसी और के पास नहीं। इसी सुकून और खुद से बे इंतहा मोहब्बत के एहसास को जगाता हुआ आइए सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं नमस्कार जगदलपुर। अब पेश है मधुरी माँ। रास्ते बुला रहे हैं, मंजिल का पता नहीं, इस हंसी सफर की कोई इंतहा नहीं। खोल दी हैं बाहें इन वादियों ने कुछ इस तरह कि अब दिल पर हमारा कोई बस रहा नहीं।

उलझ सी गई हैं सांसें, धड़कन मचलने लगी है जब से उन आँखों की रोशनी दिल में उतरने लगी है। एक अजब सी कशिश है उनकी मासूम अदाओं में कि ये दुनिया अब हमें बेहद हसीं लगने लगी है।

0: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
1: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
0: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
1: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
0: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
0: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
0: 8700001-4242।
2: नींद आंखों में नहीं, ख्वाबों में वो आने लगी है। अपनी चंचल अदाओं से वो दिल को धड़काने लगी है। एक ऐसी हसीना जो हकीकत में तो नहीं मिलती, पर बंद आंखों से मेरे दिल की दुनिया सजाने लगी है।

हवा का हर एक झोंका तुम्हारी खुशबू लाता है, जब भी आंखें बंद करूं तुम्हारा चेहरा नजर आता है। बसे हो तुम मेरे मन के आंगन में कुछ इस कदर कि तुम्हें सोचे बिना मेरा एक पल भी नहीं जाता है।

चोरी चोरी तुमसे नजरें मिलाना अच्छा लगता है, तुम्हें सोचकर इस दिल का मुस्कुराना अच्छा लगता है। पूरी दुनिया से छुपाकर रखा है जो राज हमने, वो राज चुपके से हवाओं को बताना अच्छा लगता है।

प्रेम, यादों और मुस्कुराहटों से सजे इन गीतों के साथ मधुरिमा को यहीं विराम देते हैं। कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर से अब आपकी रेडियो साथी आशा दुल्हानी विदा लेती है। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, इसी शुभकामना के साथ नमस्कार।

नमस्कार जगदलपुर, ये कार्यक्रम अभी आपने सुना। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। प्रातः के 8 बजने को है समाचार प्रभात। अब हम आकाशवाणी दिल्ली से

0: याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत योजना के अंतर्गत देश भर में 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण किया, दो नई रेलगाड़ियों को भी रवाना किया। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में सीमा सुरक्षा बल की सीमा चौकी का दौरा करेंगे, सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा और विकास कार्यों की भी शुरुआत करेंगे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति को लेकर चिंता जताई, प्रदर्शनकारियों की मौत की जांच की मांग। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु और चीन की चेन युफेई के बीच मुकाबला जारी। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात मियामी में तीसरे स्थान के लिए फ्रांस का मुकाबला इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के जालंधर से कल 20 राज्यों के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। इन स्टेशनों का पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत लगभग 1575 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। ये योजना दुनिया के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रमों में से एक है। विरासत भी विकास भी की भावना के अनुरूप विकसित इन स्टेशनों में स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला की झलक दिखाई देती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण भारतीय रेल में तेजी से हो रहे परिवर्तन का प्रतीक है।
2: अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाया जा रहा है और इनमें से कई स्टेशन पर काम पूरा हो चुका है। 75 स्टेशन का लोकार्पण किया गया है। जब आप यहाँ जालंधर कैंट स्टेशन में जाएंगे तब आपको एहसास होगा कि वाकई हमारा देश विकसित राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है।
1: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने करतौली अंबाला रेल सेवा और अमृतसर छेहरटा और वाराणसी के बीच संत रविदास एक्सप्रेस को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार नागरिक देवो भवः के मंत्र के साथ कार्य कर रही है।
2: हम नागरिक देवो भवः इस मंत्र पर चल रहे हैं। गरीब हो, मिडिल क्लास हो, ऐसे हर परिवार को बेस्ट से बेस्ट सुविधा मिले, ये हमारा प्रयास है। और नागरिक देवो भव का ये भाव हमारे काम में दिखता है।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री ने हरियाणा के जींद से देश की पहली हाइड्रोजन संचालित यात्री रेलगाड़ी को रवाना किया। संसद का मौन सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। ये सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। सरकार ने सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में पेंशन संबंधी मुकदमों पर दूसरी राष्ट्रीय कार्यशाला के पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे। सभी मंत्रालयों और विभागों के नोडल अधिकारी और सलाहकार कार्यशाला में भाग लेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वे राज्य में 3 नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन और जन्म मृत्यु पंजीकरण से जुड़े मामलों की भी समीक्षा करेंगे। शाम को वे कोलकाता रवाना होंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं पर 16,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी।

0: इन तीन परियोजनाओं में खराड़ी जंक्शन और शिरूर बाईपास के बीच 53 किलोमीटर से अधिक लंबी 6 लेन की सड़क शामिल है, जो 246 किलोमीटर लंबे पुणे संभाजीनगर ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे का पहला चरण है। इसके अलावा हटपसर और यवत के बीच करीब 32 किलोमीटर की सड़क और तालेगांव चाकन शिकरापुर के बीच करीब 54 किलोमीटर की सड़क का भी शिलान्यास किया जाएगा। इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी में सुधार, यात्रा समय में कमी और यातायात जाम में कमी आने के साथ साथ पुणे क्षेत्र में औद्योगिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी अशांति पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने प्रदर्शनकारियों की मौतों की त्वरित निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है। श्री तुर्क ने पाकिस्तानी अधिकारियों से संयम बरतने, लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने और हिंसा की घटनाओं के लिए जवाबदेही तय करने का आग्रह किया। उन्होंने क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच शांति बनाए रखने की अपील की। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार पिछले महीने से चुनावों से पहले जारी प्रदर्शनों के दौरान कई लोगों की मौत हुई है। उच्चायुक्त ने सभी मौतों की निष्पक्ष जांच की आवश्यकता पर जोर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजनाओं को लेकर भारत और जापान के बीच बातचीत अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सोशल मीडिया पर की गई कुछ टिप्पणियां व्यक्तिगत राय पर आधारित हैं और तथ्यों से मेल नहीं खाती। उन्होंने बताया कि परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और पहला खंड वर्ष 2027 में शुरू होने की उम्मीद है। चाबहार बंदरगाह के संबंध में विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमरीका की ओर से दी गई छूट कुछ समय पहले समाप्त हो गई थी और इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए संबंधित पक्षों के साथ बातचीत जारी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत सरकार का रुख स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पूरे केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है।
2: मैं यह कहना चाहूंगा और हम लोगों ने हमेशा से यह कहते आए हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरीज जो पूरा क्षेत्र है, ये भारत का अंग है, भारत का अंग था, भारत का अंग रहेगा।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एस्टोनिया के विदेश मंत्री मार्गत स्काहकना से राजधानी टालिन में मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता वार्ता के सफल समापन के बाद नए अवसरों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। भारत एस्टोनेशिया व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि क्षमता और बड़े विनिर्माण आधार को विश्व स्तरीय उत्पादन के साथ जोड़कर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत किया जा रहा है।
3: Working to strengthen each other's...
4: हम एक दूसरे की अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने और यूरोपीय संघ के सभी लोगों और भारतीयों के लिए साझा समृद्धि और बेहतर भविष्य की दिशा में मिलकर काम कर रहे हैं। हमने एफ्टा के साथ समझौते किए हैं जो पिछले साल 1 अक्टूबर से लागू हुए। ब्रिटेन के साथ समझौता 15 जुलाई को लागू हुआ और 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के साथ समझौता 2027 की पहली तिमाही में लागू होगा। इन समझौतों के साथ हम पूरे यूरोप के साथ कई क्षेत्रों में दोतरफा व्यापार के लिए तैयार होंगे।
1: पनामा के विदेश मंत्री जेवियर एडवार्डो मार्टिनेज आचावास्केज 5 दिन की यात्रा पर कल भारत आ रहे हैं। वे सोमवार को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से मिलेंगे। भारत की 4 दिन की यात्रा पर आए जांजीबार के राष्ट्रपति डॉ हुसैन अली मिवनई आज नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। कल उन्होंने चेन्नई में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के 63वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। हमारी श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आगामी कड़ी में हम रामवीर तंवर से बातचीत करेंगे। श्री तंवर ने जल संरक्षण और जल निकायों को पुनर्जीवित करने के लिए व्यापक कार्य किया है। उन्हें आमतौर पर पॉन्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है।
5: मेरा भतीजा आया था कि अंकल आपका नाम टीवी में आ रहा है और मैं भगा भगा नीचे गया। जब तक नीचे गया तो मन की बात प्रोग्राम तो चल रहा था बट मेरा वाला जो पार्ट था वो खत्म हो गया था तो मैं वापस गया अपने कमरे में। जब लेकिन वहां जाके देखा तो मेरा मोबाइल बज रहा था। मैंने उठा के देखा तो बहुत सारे ढेरों सारे मैसेज थे। पक्षी तालाब किनारे पे तो बैठ नहीं सकता तो हम क्या करते हैं तालाब के बीच में एक आईलैंड बनाते हैं मिट्टी का, उस पर बैठने की व्यवस्था करते हैं। अभी तक 100 से ज्यादा आईलैंड बनाया।
6: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
1: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी गोल्ड पर सुना जा सकता है। आप इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु और विश्व की चौथी वरीयता प्राप्त चीन की चेन युफेई के बीच मुकाबला जारी है। सिंधु कल अपने क्वार्टर फाइनल मैच में जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी नोकुहारा के हटने के बाद अंतिम चार में पहुंची हैं। और अब अन्य खेल खबरों के साथ हैं मृगनयनी पांडे।
7: हॉकी इंडिया आज से देश भर में कोचिंग और

0: जाएगा। ये मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 12:30 पर शुरू होगा। समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: मौसम विभाग ने उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कल तक तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में भी कल तक तेज वर्षा हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है फरहत नाज।
2: धन्यवाद जागृति। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत को सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमर उजाला लिखता है, न धुआं न प्रदूषण, रेलवे में हरित परिवहन की शुरुआत। प्रधानमंत्री ने कहा, दुनिया की सबसे लंबी और ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, हाइड्रोजन की ताकत, स्वदेशी तकनीक, पटरी पर दौड़ी देश की ऐसी पहली ट्रेन। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर नागरिकता का प्रश्न उठाते हुए लिखा है, समस्या यह है कि अपने देश में नागरिकता सिद्ध करने वाला कोई सुनिश्चित प्रमाण पत्र नहीं है। हिंदुस्तान ने एसआईआर से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी को प्रथम पृष्ठ पर दिया है, एसआईआर में नाम कटने से नागरिकता नहीं जाती। 10 और 20 रुपए के प्लास्टिक नोट अगले साल आ सकते हैं, लिखता है दैनिक भास्कर। पॉलीमर शीट कंपनियों से निविदाएं मंगाई, 18 अगस्त को टेंडर। जनसत्ता ने आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा का बयान दिया है, कमजोर मॉनसून आर्थिक वृद्धि के लिए जोखिम।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत योजना के अंतर्गत देश भर में 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण किया, 2 नई रेलगाड़ियों को भी रवाना किया। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में सीमा सुरक्षा बल की सीमा चौकी का दौरा करेंगे, सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा और विकास कार्यों की शुरुआत भी करेंगे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति को लेकर चिंता जताई, प्रदर्शनकारियों की मौत की जांच की मांग। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु और चीन की चेन युफेई के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Akashvani presents Morning News. Good morning, I'm Sanjay Mattu. The headlines. Prime Minister Narendra Modi inaugurates 75 redeveloped railway stations across the country under Amrit Bharat scheme. Also flags off 2 new train services. Home Minister Amit Shah to visit BSF border outpost in West Bengal today to review security and launch development initiatives. UN Human Rights Agency voices concern over wave of unrest in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Calls for probe into deaths of protesters. In Japan Open Badminton, PV Sindhu faces Chen Yufei of China in semi-final of women's singles in Tokyo, and in FIFA World Cup, France and England to lock horns for third place at Miami tonight. Prime Minister Narendra Modi virtually inaugurated 75 redeveloped railway stations across 20 states from Jalandhar in Punjab last evening. These stations have been modernized under the Amrit Bharat Station Scheme, which is one of the world's largest station redevelopment programs. Developed at a cost of about 1,570 crore rupees, these stations have been transformed into modern passenger-friendly facilities. Redeveloped in the spirit of Virasat Bhi, Vikas Bhi, the stations incorporate elements reflecting local culture, heritage and architecture. On the occasion, Mr. Modi flagged off the Kartoli-Ambala train service, which will improve connectivity across Punjab, Haryana and Himachal Pradesh. He also flagged off the Sant Ravidas Express between Amritsar and Varanasi, establishing a direct rail link between two of India's most revered spiritual and cultural centres. He also inaugurated the 30.9-kilometre-long Package 6 of the 4-lane Greenfield Delhi-Amritsar-Katra Expressway. Speaking on the occasion, Mr. Modi said the inauguration of the 75 redeveloped railway stations reflects the rapid transformation that Indian Railways has undergone over the past few years.
4: बीते वर्षों में भाजपा सरकार ने स्थितियों को बदलना शुरू किया। आज पूरे देश में रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है। अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाया जा रहा है और इनमें से कई स्टेशन पर काम पूरा हो चुका है। आज ऐसे ही 75 स्टेशन का लोकार्पण किया गया है।

आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। समन्वित कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह में सुनिए किडनी की समस्याएं और समाधान विषय पर डॉक्टर सोमानी से ली गई भेंट वार्ता। भेंट करता है दीपक हटवार।

0: डॉक्टर की सलाह के सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारे शरीर के सभी अंग हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं। शरीर के कुछ अंग ऐसे होते हैं जो फिल्टर करने का भी काम करते हैं, और उन अंगों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है किडनी। और इन दिनों ये देखा जा रहा है कि बहुत से लोग किडनी से संबंधित समस्याओं का सामना करते हैं। तो किडनी से संबंधित कौन कौन सी समस्याएं हैं और इनके होने का कारण क्या है, इसके लक्षण क्या है और किस तरह से इसका हम उपचार करवा सकते हैं, इस पर विस्तार से बातचीत के लिए हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर कृष्णा सोमानी साहब को। आप नेफ्रोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: डॉक्टर सोमानी साहब, किडनी से संबंधित बहुत से पेशेंट देखे जाते हैं। कुछ लोगों को समस्याएं छोटे रूप में होती है, कुछ लोगों की समस्याएं बहुत बड़े रूप में होती है। तो इन समस्याओं को आप किस तरह से वर्गीकृत कर बताना चाहेंगे?
1: किडनी की समस्याएं हम अगर एक सिंपल वे में समझें तो किसी भी एज, किसी भी उम्र में और किसी भी को हो सकती है। ऐसा कोई एज बाउंडेशन नहीं रहता कि ये में नहीं होती। दूसरी चीज, दो तरह की बीमारियां रहती है। एक होती है जो पूरी तरह से ठीक हो सकती हैं, उनको एक्यूट किडनी डिजीजेस बोलते हैं या AKI बोलते हैं, और दूसरी होती है क्रॉनिक किडनी डिजीज या CKD। और ये जो CKD वाली बीमारी है, ये पूरी तरह से ठीक नहीं होती। तो किडनी की बीमारियों को अगर हम समझते हैं तो दो मुख्य रूप में विभाजित कर सकते हैं, एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट जो होता है वो पूरी तरह से ठीक हो सकता है और बहुत ही शॉर्ट टाइम स्पैन में वो मरीज के शरीर पे हमला करते हैं, और उनका अगर सही समय पे इलाज हो जाए तो वो तुरंत ठीक हो जाते हैं। क्रॉनिक किडनी डिजीज

0: या सीकेडी जो होते हैं वो धीरे धीरे धीरे किडनी को इफेक्ट करते हैं। पेशेंट्स को शुरुआती स्टेज में कोई सिम्टम्स भी नहीं आते, और सही समय पे उनका अगर हम डायग्नोसिस कर लेते हैं तो उनको वहीं पे हम रोक सकते हैं, आगे बढ़ने नहीं देते, जिससे मरीज को कंप्लीटली किडनी फेलियर और किडनी डायलिसिस और ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़े।
1: सर, अगर हम किडनी से जुड़ी साधारण समस्याओं की बात करें तो ये किस किस तरह की समस्या होती है जो कि दवाइयों से ठीक हो जाती है?
0: तो एक्यूट किडनी डिजीजेस जो हैं उसमें सबसे हमको ये समझना रहता है कि आपके शरीर में कोई भी तरह की बीमारी हो और वो ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज में चली गई है, जैसे कि अगर किसी को मलेरिया हुआ है, डेंगू हुआ है, या लूज मोशंस हो गए हैं, या फिर कोई किसी भी तरह का फीवर है, टीबी है, और वो बहुत एक्सट्रीम पे चले गए, तो आपकी किडनीज बहुत नाजुक ऑर्गन है, वो आपको इफेक्ट करेगी। या फिर अगर किडनी में पथरी हो गई है और दोनों तरफ वो पथरियां यूरिन के रास्ते को रोक दी है तो आपके किडनी पे असर होगा। किसी को कभी कहीं चोट लग जाती है, पॉलीट्रॉमा, मल्टीपल जगह रोड एक्सीडेंट्स, या कोई भी दूसरी बीमारी, कुछ आपने गलत दवाई खा ली है या कभी सांप काट गया है, तो ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जिसमें किडनी तुरंत डैमेज मतलब टॉक्सिन्स की वजह से डैमेज होता है और वो टाइमली ट्रीटमेंट से ठीक हो जाते हैं। तो ये हम उसको

0: डायबिटीज और ब्लड प्रेशर एक बहुत कॉमन बीमारी है। हम हर तीसरे हर पांचवें व्यक्ति में शुगर या बीपी पकड़ते हैं। तो डायबिटीज और ब्लड प्रेशर जिनको भी रहता है उनमें किडनी प्रॉब्लम, शुगर बीपी वेल कंट्रोल रहने पर भी कई मरीजों में शुरुआती किडनी प्रॉब्लम निकल आती है। दूसरे पेशेंट्स ऐसे रहते हैं जिनको लंबे समय से दर्द की कुछ दवाइयां वो खा रहे हैं, जैसे कि आर्थराइटिस है, माइग्रेन है, या कोई भी तरह का पेन किलर वो खा रहे हैं, और उस पेन किलर की वजह से किडनी में वो डैमेज कर रहा है। छत्तीसगढ़ में मैं आपको डेफिनेटली बोलूंगा सिकलिंग बहुत कॉमन है, और जिनको सिकलिंग बहुत सीवियर फॉर्म में रहता है, सिकलिंग डिजीज रहती है, उनमें भी किडनी प्रॉब्लम डेवलप होने का हाई चांस हम देखते हैं। और फिर क्योंकि ओवरऑल इंडिया ही एक गर्म देश है, तो यहाँ पे पानी की कमी और पानी में कई तरह की नमक ज्यादा होने की वजह से पथरी बहुत लोगों में दिखती है। अगर ये पथरी बार बार हो, रिकरेंट हो और बहुत साइज में बड़ी हो, तो ये भी किडनी डैमेज करके सीकेडी में कन्वर्ट हो जाते हैं।
1: डॉक्टर सोमानी, अगर हम दूसरी जो गंभीर समस्याओं की बात जो आप कह रहे हैं उसके बारे में, अगर इसके लक्षणों की बात करें, तो एक आम व्यक्ति को कैसे पता चलेगा कि किडनी की कोई समस्या धीरे धीरे घर कर रही है?
0: तो सबसे स्ट्रेंज बात यह है इस बीमारी में कि जो शुरुआती स्टेजेस होती है उसमें कोई ऑब्वियस लक्षण नहीं होते। आप शायद किसी फिजिशियन के पास जाओ तो वो उस चीज को पकड़ ले जिसको आप नॉर्मल

0: तो अगर आपके पेशाब में करते वक्त आप देख रहे हैं कि कमोड में बहुत ज़्यादा फेस, बहुत ज़्यादा फोम है, फोमी यूरिन है, झाग आ रहा है, तो उस समय आपको यूरिन की जांच करवा लेनी चाहिए, क्योंकि वो यूरिन से प्रोटीन लीकेज होने का एक सिम्टम रहता है। दूसरा, अनएक्सप्लेन थकान रहना कि हमारा खाना पीना सब अच्छा है, हम बाकी सब सही चल रहा है, फिर भी बहुत ज़्यादा थकान रहती है, या शरीर में बहुत खुजली हो रही है, या फिर भूख नहीं लग रही है, या पैरों में या चेहरे पे सूजन आ रही है, तो ये सारे लक्षण किडनी की बीमारी के हो सकते हैं। एक जो मैं सबसे ज़रूरी बात जो कई बार मिस हो जाती है, मैं को हाईलाइट करूँगा, कई अगर आप देखते हैं कि कोई भी आपके नियर बाय या आपके फैमिली में 40 से पहले किसी को ब्लड प्रेशर है, बीपी डिटेक्ट हुआ है, तो जो ये गलती कॉमनली लोग करते हैं कि बीपी हो गया, बीपी की दवाई खा रहे हैं, पर यूजुअली जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो आप और हम समझते हैं वो 40 के बाद होता है। अगर आपके घर में या किसी को भी ब्लड प्रेशर डिटेक्ट हुआ है 40 से पहले, जिसको हम यंग हाइपरटेंशन कहते हैं, तो उसमें डेफिनेटली किडनी का जांच करवाना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट 10 में से 6 लोगों को किडनी का समस्या निकलता है, और किडनी की समस्या की वजह से उनको ब्लड प्रेशर आता है।
1: डॉक्टर साहब, अगर हम इन लक्षणों को नज़रअंदाज करने की बात करते हैं कि कई बार क्या होता है ना, कि जैसे आपने बताया कि पैरों में सूजन आ गई, पैरों में सूजन आने से सिर्फ सूजन दिखाई दे रही है, कोई कष्ट तो नहीं हो रहा है, दर्द तो नहीं हो रहा है, तो क्या इसे लोग नज़रअंदाज भी करते हैं?
0: देखो, पैरों में सूजन आना मतलब किडनी प्रॉब्लम होना, ऐसा 100% नहीं है, पर पैरों की सूजन को नज़रअंदाज करना बिल्कुल रिस्की है, गलत है आपके लिए। अगर सूजन आती है तो उसका एक प्रॉपर चेकअप आपके नियरेस्ट फिजिशियन से करवाएं, और बहुत ही सिंपल और कम खर्च वाले जो टेस्ट होते हैं ब्लड एंड यूरिन के, उससे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि ये जस्ट एक कोई माइनर चीज है या कुछ मेजर बीमारी का इंडिकेशन दे रही है।
1: डॉक्टर सोमानी, आजकल तो बहुत सारे टेस्ट पैकेजेस में होते हैं और रूटीन टेस्ट भी लोग अपना करवाते हैं, जिसमें लीवर का और किडनी का भी टेस्ट होता है ब्लड टेस्ट के जरिए, तो इस तरह के टेस्ट अगर करवाने से वो नॉर्मल आते हैं तो क्या हम निश्चिंत हो जाएं?
0: हाँ, अगर आपको और कोई मेजर इश्यूज नहीं है, आपने एक रूटीन चेक करवा लिया है, वो सब नॉर्मल है, तो डेफिनेटली आप निश्चिंत हो सकते हैं। पर अगर आपको पहले कुछ बीमारी हुई है, कुछ मेजर और दूसरी दवाई चल रही है, या फिर पहले कभी पथरी हुई है, तो पथरी आपको यूरिन और ब्लड टेस्ट से तो नहीं समझेगा, उसके लिए आपको एक सोनोग्राफी भी जरूरत पड़ेगा। तो सब चीज खुद से ना करवा के आप किसी को कंसल्ट करिए।
1: डॉक्टर सोमानी, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि हेरिडिटिक होती हैं, वंशानुगत भी होती है, क्या किडनी की भी समस्या वंशानुगत या हेरिडिटिक हो सकती है?
0: तो इसमें मैं सबसे पहले मेंशन करूंगा, एक सिस्ट की बीमारी होती है जिसको हम पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज बोलते हैं, ये बहुत ही स्ट्रांगली वंशानुगत रहती है, पेरेंट्स से बच्चों में, बच्चों से उनके बच्चों में आती है, कि अगर पेरेंट्स को या आपके मामा साइड मतलब मैटरनल साइड या पैटर्नल साइड में किसी को किडनी में पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज बीमारी है, तो आपको खुद की और आपके बच्चों की एक सोनोग्राफी स्क्रीनिंग के तौर पे करवानी चाहिए। उसमें सिस्ट अगर हम दिख जाते हैं तो अब हमारे पास मेडिसिन्स आ गई हैं जिससे ये सिस्ट की साइज आगे ना बढ़े और ये कभी भी किडनी फेलियर में कन्वर्ट ना हो, तो उसका ट्रीटमेंट है। इसलिए हम सबको बोलते हैं कि अगर जो भी हमको पॉलीसिस्टिक किडनी का मरीज मिलता है उनके फैमिली मेंबर्स का हम स्क्रीनिंग जरूर करवाते हैं।
1: अब हम बात करते हैं किडनी से संबंधित समस्या के गंभीर होने की। जैसा कि आपने बताया कि कुछ लक्षण जो दिखाई देते हैं, जैसे पेशाब में झाग आना या पैरों में या चेहरे में सूजन आ जाना और पेशाब का ठीक से नहीं होना, ये भी एक समस्या है, और इस समस्या की जांच करवाने जब व्यक्ति डॉक्टर के पास जाते हैं और उन्हें डॉक्टर बताते हैं कि आपको किडनी से संबंधित समस्या दिखाई देती है, शुरू हो रही है, तो कई बार ये देखा गया है कि आगे चल के ये समस्या बढ़ जाती है और नौबत डायलिसिस तक की आ जाती है, तो क्या इस तरह की समस्या को डायलिसिस की स्थिति तक पहुंचने के लिए रोका जा सकता है?

0: तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि उनको कौन सी बीमारी की वजह से सीकेडी हुआ है। अगर सीकेडी आपको हुआ है शुगर की वजह से, तो ये बहुत जल्दी जल्दी प्रोग्रेस करता है। दवाइयों से आजकल अभी रिसेंटली कुछ दो तीन अच्छी दवाइयाँ आ गई है, जिससे इसका जो स्पीड ऑफ प्रोग्रेशन है, जितना जल्दी बढ़ रहा है उसको आप डेफिनेटली ब्रेक लगा सकते हो, पर ये पूरा नॉर्मल हो जाए असंभव है। शुगर संबंधित जो किडनी रोग है और उसकी मैं बात कर रहा हूँ, और उस केस में एक पॉइंट पे डायलिसिस लगता है। पर अगर हम दूसरी बीमारियां देखें सीकेडी के दूसरे कारण, जैसे कि अगर पेन किलर है या ब्लड प्रेशर है या कुछ और दूसरी, तो उनमें दवाइयों से उसको कंप्लीटली वहीं पे रोक सकते हैं। तो वो डिपेंड करेगा कि क्या कारण से मरीज को सीकेडी डेवलप हुआ, और उस हिसाब से उसका इलाज होता है। इन एनी केस, अगर पेशेंट को सीकेडी है, तो अगर वो मेडिसिंस, डाइट, वैक्सीनेशन और कुछ इम्पॉर्टेंट सावधानियां रखते हैं, तो उनका डायलिसिस डेफिनेटली 5 से 10 साल आगे खसक जाता है। अगर वो दवाइयां रेगुलरली ले रहे हैं, अगर वो डाइट का फॉलो कर रहे हैं, तो पेशेंट को काफी हेल्प मिल सकती है।
1: डॉक्टर सोमानी, अगर हम अपने नियमित खान पान या रहन सहन की बात करें, या फिर शारीरिक जो क्रियाएं होती हैं उनकी अगर बात करें, तो क्या इनका भी हमारे किडनी की समस्या से कोई संबंध है?
0: डेफिनेटली बहुत बड़ा संबंध है। ये जो लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, मोटापा, अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल, डाइट कंट्रोल और फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज, कसरत आपकी डेली रूटीन में है, तो ये सारी बीमारियां होने का रिस्क आपको कम हो जाएगा। आपका वजन नहीं बढ़ेगा, आप मस्कुलर रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, तो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, मोटापा ये आपको नहीं होएगा। और अगर ये नहीं होगा तो आपके किडनी प्रॉब्लम होने का जो रिस्क है वो भी काफी काफी कम हो जाता है। इवन इफ आपको अगर शुरुआती किडनी प्रॉब्लम है और आपकी एक लाइफस्टाइल अच्छी है, डाइट करेक्ट ले रहे हैं और फिजिकल एक्टिविटी किसी भी फॉर्म में 30 मिनट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी अगर आप करते हैं, तो आपकी किडनी की प्रॉब्लम में भी काफी फायदा होता है।
1: डॉक्टर साहब, एक बात जो कॉमन देखी गई है लोगों में कि जब भी उन्हें कोई दर्द होता है, चाहे सिर दर्द की बात करें, बदन दर्द की बात करें, या कभी पैरों में दर्द हो रहा है, या कभी कंधे में या हाथ में दर्द हो रहा है, तो वो जाते हैं मेडिकल स्टोर और वहां से कहते हैं कि मुझे फलाना पेन किलर आप दे दीजिए, लेकर आते हैं, खाते हैं। क्या ये पेन किलर खाने की जो आदत है ये भी हमारे किडनी को प्रभावित करती है?
0: ये बहुत ज़्यादा अच्छा सवाल है और ये बहुत कॉमन कारण है। तो एक या दो टैबलेट खा लेने से तो कुछ होता नहीं है, पर अगर आप इसको रूटीन में यूज़ कर रहे हैं और उसका कारण नहीं समझ रहे, जैसे आपको हेडेक हो रहा है हमेशा, आप अपना बीपी चेक करवाइए, आप अपने चश्मे का नंबर चेक करवाइए, कुछ ENT प्रॉब्लम है वो देखिए और उसका कारण समझ के उसका इलाज करिए। ये नहीं कि बस आप हेडेक हुआ और तुरंत आपने कोई पेन किलर खाया। वैसे ही कहीं पे भी दर्द है तो आप अपना हीमोग्लोबिन चेक करवाएं, या कुछ इंजरी हो रहा है, कुछ जोड़ों में घस गया है, कोई आर्थराइटिस है, आप उसका कारण समझिए, उसका स्पेसिफिक इलाज करवाइए, तो उससे वो हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। रादर देन गोली खा के सिर्फ आप 12 घंटे रिलीफ रहते हैं और आपका किडनी भी धीरे धीरे डैमेज होता है।
1: डॉक्टर कृष्णा सोमानी, आज आप बहुत अच्छी जानकारी हमें दे रहे हैं किडनी से संबंधित समस्या और उसके समाधान के बारे में। इस पर विस्तार से आगे भी हम आपसे बातचीत करेंगे। उसके पहले मन कर रहा है कि इस बातचीत को थोड़ा सा मनोरंजन की ओर मोड़ें और आपकी पसंद का कोई फिल्मी गीत श्रोताओं को सुनवाया जाए।
0: तो जब वी मेट का ये इश्क खाए,
1: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का फिल्म जब वी मेट का ये गीत।

0: श्रोताओं, डॉक्टर की सलाह के इस अंक में हमारे साथ हैं डॉक्टर कृष्णा सोमानी जी, और आप हमें किडनी की समस्या और समाधान के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, इस गीत से पहले आपने बताया कि पेन किलर लेने की जो आदत है वो हमारे किडनी को भी प्रभावित कर सकती है। अब हम कारण कोई भी हो, किडनी पर अगर उसका असर पड़ता है तो ये असर आगे चलकर गंभीर रूप भी लेता है, और अब हम उस गंभीर स्थिति के बारे में आपसे चर्चा करना चाहेंगे कि जब किसी व्यक्ति की किडनी की समस्या जो है ये डायलिसिस की नौबत तक पहुंच जाती है, तब उसके लिए क्या डायलिसिस ही एकमात्र उपाय होता है कि वो अपनी किडनी को अपने शरीर के मुताबिक रख सके, या फिर उसका कोई दूसरा विकल्प भी है?
1: तो हम

इसको इस तरह से समझते हैं कि जब आपकी किडनी मोर देन 90% काम नहीं कर रही, तो खून में गंदगी जमा हो रही है और सफाई नहीं हो रही, तो खून की नियमित रूप से सफाई होनी जरूरी है, नहीं तो वो दूसरे अंगों को प्रभावित करेगी। तो खून की नियमित सफाई आर्टिफिशियली हम मशीन द्वारा जब करते हैं तो उसी को डायलिसिस बोला जाता है। डायलिसिस कंप्लीटली पेनलेस होता है, पहली चीज उसमें दर्द नहीं होता, उसमें कोई बहुत मेजर तकलीफ नहीं होती पेशेंट्स को, ये एक लाइफ सेविंग चीज है। तो अगर आपका नेफ्रोलॉजिस्ट आपको डायलिसिस के लिए एडवाइस किए हैं, तो उससे बिल्कुल भी डरने, घबराने या

0: लिए डायलिसिस एक बहुत अच्छी थेरेपी है, पर ये जो किडनी, अगर दोनों किडनी फेल है, तो इसका जो परमानेंट सोल्यूशन है, जिससे आपका डायलिसिस भी बंद हो जाए, आपकी डाइट पूरी नॉर्मल हो जाए, होता है किडनी ट्रांसप्लांट, मतलब किडनी प्रत्यारोपण। इसमें एक शरीर में नई किडनी लगा के आपको ऑपरेशन के द्वारा नई किडनी लगाई जाती है, और वो आपकी खून की जो फिल्टरिंग, जो सफाई है, वो चालू हो जाती है। इसके ऑपरेशन के बाद कई तरह की दवाइयाँ देनी रहती है, जो आपको लाइफ लॉन्ग चलती है। दवाइयाँ बंद नहीं होती, पर आपका डायलिसिस बंद हो जाता है, आपकी लाइफस्टाइल पूरी नॉर्मल हो जाती है, और फिर आप काफ़ी फ्रीली और इंडिपेंडेंटली रह पाते हैं।
1: किडनी ट्रांसप्लांट का जो विकल्प आपने बताया है, तो ये किडनी का जो ट्रांसप्लांट है, क्या अपने करीबी ही किसी व्यक्ति का लिया जा सकता है, किडनी ली जा सकती है या कोई भी दे सकता है?
0: बेसिकली दो तरह के ट्रांसप्लांट होते हैं, एक तो लाइव रिलेटेड और एक कैडेवर। तो लाइव रिलेटेड की बात करें तो सिर्फ नियर बाय रिश्तेदार ही आपको किडनी डोनेट कर सकते हैं, यही लीगल है इंडिया में, कोई भी नहीं दे सकता। और इसमें भी रिश्ते डिफाइंड है, दादा दादी, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे और हस्बैंड एंड वाइफ। तो ये पांच ही रिश्ते आपके आपको किडनी डोनेट कर सकते हैं।
1: और जो आपने दूसरा जो
0: जो
1: बताया,
0: कैडेवर रजिस्ट्रेशन होता है, अब कई बार ब्लड ग्रुप मैच नहीं करता, या घर में कोई प्रॉपर डोनर ही नहीं है, तो उस स्थिति में वो पेशेंट क्या करे? तो उस स्थिति में हम लोग ना स्टेट में एक वेटिंग लिस्ट बनाते हैं, और मरीज का उस लिस्ट में नाम रजिस्टर कर देते हैं। अब जब भी आप देखते हैं कोई एक्सीडेंट केस होता है, या फिर कोई फैमिली में डेथ होती है, और उसके रिलेटिव्स चाहते हैं कि हमारे जो मरीज जो अब नहीं रहे, उनकी ऑर्गन्स डोनेट करें, तो वो ऑर्गन्स फिर उस वेटिंग लिस्ट के जरिए एलोकेट होते हैं पेशेंट्स को, तो उसको कैडेवर रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। तो अगर घर में कोई डोनर नहीं है अवेलेबल, तो फिर आप हम मरीज को कैडेवर रजिस्ट्रेशन में अप्लाई करवा देते हैं, वहाँ उसका नाम वेटिंग लिस्ट में आ जाता है। तो जब कॉल आता है, जब उनका नंबर आता है, और जब किडनी अवेलेबल रहती है, तो उस टाइम वो ऑपरेशन करके मरीज ठीक हो जाता है।
1: इस स्थिति में क्या केवल ब्रेन डेड व्यक्ति की ही किडनी ली जा सकती है या सामान्य मौत होने वाले व्यक्ति की भी ली जा सकती है?
0: नहीं, कोई भी सामान्य मौत, एक्सीडेंटल डेथ, ब्रेन डेथ, ये किसी भी स्टेट में आप डोनेशन कर सकते हैं।
1: मृत व्यक्ति की किडनी क्या ली जा सकती है?
0: हाँ, पर उसका टाइम ड्यूरेशन है। जैसे
1: कितना?
0: डेथ हुई
1: हाँ
0: तो विद इन 1 आवर आपको इन्फॉर्म करना है, और उसके कुछ समय में वो टीम आएगी, हॉस्पिटल लेके जाएंगे। ऑर्गन सिर्फ किडनी नहीं निकाली जाती, बाकी ऑर्गन्स भी वो निकाले जाते हैं, जैसे लीवर हो गया, कॉर्निया हो
1: काम आ
0: गई,
1: जाते
0: वो
1: हैं।
0: सब काम आ जाते हैं। और जहाँ जहाँ मरीज एलोकेटेड रहते हैं, वहाँ वहाँ उनको ग्रीन कॉरिडोर से उनको शिफ्ट ऑर्गन्स लिए जाते
1: डॉक्टर
0: हैं।
1: सोमानी, ये आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि मृत व्यक्ति के शरीर के अंग भी किसी जरूरतमंद के काम आ सकते हैं, अगर उस अंग को एक समय रहते हुए
0: हाँ,
1: ट्रांसप्लांट निकाला जा सके। ये बहुत अच्छी आपने जानकारी दी। तो डॉक्टर साहब, ये बताएं कि अगर किसी के घर में किसी की मृत्यु हुई है और उसके अंग को वो दान देना चाहते हैं, तो तुरंत उन्हें क्या करना होगा?
0: तो तुरंत उन्हें नियरेस्ट जो नोडल एजेंसी रहती है, या फिर आप एम्स या डीकेएस या आपके नियरेस्ट हॉस्पिटल जो कैडेवर रजिस्टर्ड है,
1: जी
0: उनको इन्फॉर्म करना रहेगा। तो जब आप उनको इन्फॉर्म करोगे, तो वहाँ पे डॉक्टर्स की टीम आएगी, पेशेंट एम्बुलेंस से वो जो डेड बॉडी है उनको लेके जाएंगी, उनके ऑर्गन्स रिट्राइव करेंगे, और फिर उसके बाद आपको सौंप देते हैं।
1: ये आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस व्यक्ति को डायलिसिस की सलाह दी जाती है, वो व्यक्ति डायलिसिस कराते हुए अपने जीवन को बिल्कुल सामान्य रूप से जी सकता है?
0: देखिए, अगर आपके पास ट्रांसप्लांट का ऑप्शन ही नहीं है, तो डायलिसिस करवाना है, और वो हफ्ते में 3 बार करवाना है। डायलिसिस के साथ अगर आप प्रॉपर डाइट, दवाइयाँ, मेडिकेशन, वैक्सीन्स और रेगुलर विजिट टू योर नेफ्रोलॉजिस्ट आप अपने विशेषज्ञ को दिखा रहे हैं, तो उसमें ऑलमोस्ट सामान्य जीवन वो जी सकते हैं। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें डाइट में एक्सक्लूडेड रहती है, एक डाइट प्लान थोड़ा स्ट्रिक्ट रहता है, पर उसके अलावा अगर आप हफ्ते में 3 बार डायलिसिस करवा रहे हैं, तो ऑल

0: मोस्ट आप काम कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। हमारे कई पेशेंट्स हैं जो खुद अपनी गाड़ी चला के आते हैं, डायलिसिस करवाते हैं, वापस घर जाते हैं। कई लोग मॉर्निंग सुबह पूरा ऑफिस वर्क रहता है और शाम को डायलिसिस करवाते हैं, घर जाते हैं।
1: डॉक्टर सोमानी, आज की तारीख में अगर हम आर्थिक स्थिति और डायलिसिस की बात करें, तो सरकार की ओर से अब क्योंकि बहुत सारे आयुष्मान कार्ड की तरह जो सुविधाएं मिल रही हैं, स्वास्थ्यगत सुविधाएं मिल रही हैं, बीमा की सुविधा मिल रही है, तो इसमें अब डायलिसिस कराने वालों को किस किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं?
0: डायलिसिस पूरी तरह से फ्री है। ऑलमोस्ट सभी हॉस्पिटल्स में आयुष्मान योजना के तहत डायलिसिस फ्री होता है, आपका पैसा नहीं लगता। तो सबसे अच्छी बात है कि ये आपका एक फाइनेंशियल बर्डन नहीं बनता। दवाइयाँ जो चलती हैं वो तो आपको चलेगी, पर जो डायलिसिस का खर्च है मेजॉरिटी हॉस्पिटल्स में, जहाँ आयुष्मान योजना लागू है, वहाँ पे डायलिसिस का कोई चार्ज नहीं लिया जाए।
1: डॉक्टर कृष्णा सोमानी जी, आज आपने किडनी से संबंधित समस्या और उसके समाधान के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी दी। इस बातचीत के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ डॉक्टर की सलाह का यह अंक यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।

0: समन्वित कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह में अभी आप किडनी की समस्याएं और समाधान विषय पर डॉक्टर कृष्णा सोमानी से ली गई भेंटवार्ता सुन रहे थे। भेंट करता थे दीपक हटवार। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है बातों बातों में, इसमें सुनिए कैच द रेन अभियान और जल संरक्षण पर छत्तीसगढ़ के जल संरक्षण विशेषज्ञ श्री विपिन दुबे से ली गई भेंटवार्ता, प्रस्तुति विकल्प रंजन शुक्ल की है।
1: श्रोताओं नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के आज के अंक के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, इस वर्ष मानसून में हुई कुछ देरी ने हम सभी को जल के महत्व का एहसास करा दिया है। प्रदेश में अनेक शहरी इलाकों में कॉलोनियों में टैंकर से पानी पहुंचाना पड़ा, वहीं किसानों के माथे पर भी चिंता की लकीरें खिंच गई थीं। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि हम भूमि से जल का जितना दोहन करते हैं उतना वापस जमीन के अंदर नहीं पहुंचाते। इसे ही ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर भारत सरकार द्वारा कैच द रेन अभियान चलाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य वर्षा के पानी को बर्बाद होने से बचाना और उसे वहीं संरक्षित करना है जहां बारिश होती है। श्रोताओं, छत्तीसगढ़ में इस अभियान के तहत विभिन्न जिलों में अनेक अनुकरणीय पहल की गई हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने अपने लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात की हाल ही में प्रसारित दो कड़ियों में कोरिया और बालोद जिले में इस दिशा में किए जा रहे कार्यों का उल्लेख किया। कोरिया जिले में आवा पानी झोंकी जैसे अभिनव मॉडल के माध्यम से किसानों ने अपने खेतों में रिचार्ज तालाब और सोखता गड्ढों का निर्माण कर वर्षा जल को सहेजने का सराहनीय कार्य किया है। वहीं बालोद जिले में कैच द रेन अभियान के तहत जल संरक्षण के लिए करीब 3 लाख संरचनाएं बनाई गई हैं। इससे वर्षा जल को संरक्षित और एकत्रित करने की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। श्रोताओं, कैच द रेन अभियान और जल संरक्षण के महत्व और इसके विभिन्न पहलुओं पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ के जाने माने जल संरक्षण विशेषज्ञ श्री विपिन दुबे। जल संरक्षण के क्षेत्र में वैज्ञानिक पद्धति से उल्लेखनीय योगदान देने के लिए डॉक्टर दुबे को भारत सरकार की ओर से वाटर हीरो अवार्ड और जल प्रहरी सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। विपिन जी, इस कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं।
2: बहुत बहुत धन्यवाद शुक्ला जी।
1: विपिन जी, हमारा देश इस मामले में सौभाग्यशाली है कि यहाँ पर बारिश बड़ी तादाद में होती है, लेकिन इसके बावजूद कई क्षेत्रों में देखने में आता है कि वहाँ पर भूमिगत जल की कमी का सामना करना पड़ता है। यह स्थिति क्यों बनती है?
2: अब भारत देश में यदि एवरेज हम एनुअल रेनफॉल लेते हैं तो भारत देश में 1100 mm की बारिश होती है
1: जी।
2: इस 1100 mm की बारिश पूरे भारत देश के विभिन्न राज्यों को मिलाकर के आंकड़े

0: निकाले गए हैं
1: जी,
0: उसके बावजूद भी हम जो है वर्षा जल को बचा नहीं पाते हैं। और जैसे ही वर्षा ऋतु समाप्ति की ओर होता है और अक्टूबर से आगे जून तक क्रमशः जो है भूजल स्तर जो है विभिन्न प्रदेशों में अधिकांश रूप से बहुत ही व्यापक रूप से नीचे चला जाता है, उसका मुख्य कारण ये है कि हम बारिश के पानी को रोक नहीं पा रहे हैं। और अधिकांश लोग कहते हैं कि इंडिया इज रनिंग आउट ऑफ वाटर, लेकिन मैं कहता हूं कि वाटर इज रनिंग आउट ऑफ इंडिया।
1: जी,
0: तो पानी जो बह करके अपने देश से जो हमारा बाहर जा रहा है उस पानी को हमें रोकना है। तो उसे हम रोकेंगे कैसे, उसके हमें विभिन्न जो वैज्ञानिक जो तरीके हैं जो तकनीकी है वो हमें अपनाना होगा। सबसे बढ़िया उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ चेरापूंजी और मेसनरम का, जहाँ 11,000-12,000 mm की बारिश होती है और गर्मी के दिनों में वहां पे लोगों की स्थिति ऐसी होती है कि वो जमीन से नीचे खोद करके पानी निकालने के लिए पीने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जबकि वहां का जो जियोलॉजी यदि देखा जाए मेसनरम का, तो वहां पे पोरस लाइमस्टोन है। लाइमस्टोन एक अच्छा वाटर बियरिंग रॉक होता है जो अपने अंदर पानी को समाहित करने की उसकी बहुत अच्छी क्षमता होती है। वैसे ही हम राजस्थान की तरफ चले जाएं तो अलवर में सबसे कम पानी गिरता है, वहां भी वाटर बियरिंग रॉक बहुत अच्छी सैंड है, पानी को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बहुत अच्छी है।
1: जी,
0: तो एक जगह बहुत अधिक पानी गिर रहा है, एक जगह कम गिर रहा है और पूरे भारत में 1100 mm की बारिश हो रही है और हम प्यासे हैं। तो हमें पानी को रोकना होगा समुद्र में जाने से, इसके लिए व्यापक उपाय करने होंगे।
1: जी विपिन जी, जैसा भी हमने अपने श्रोताओं को बताया कि भारत सरकार कैच द रेन अभियान चला रही है, ये जो वर्षा जल संरक्षण है या रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इससे अभिप्राय क्या है, इनको आसान शब्दों में हम कैसे अपने श्रोताओं को बताएं कि ये होता क्या है?
0: रेन वाटर हार्वेस्टिंग को हम इस रूप में समझ सकते हैं, उसके दो रूप है, एक शहरी क्षेत्र का रूप होता है और दूसरा होता है ग्रामीण स्तर पे।
1: जी,
0: तो शहरी क्षेत्र में आपके छतों में जो बारिश का पानी गिरता है
1: जी,
0: उसको एक पीवीसी पाइप के माध्यम से वैज्ञानिक तरीके से हम अपने ट्यूबवेल के अंदर में या कोई ऐसी भूवैज्ञानिक संरचना बनाकर, जैसे कि सोक पीट रिचार्ज वेल या परकोलेशन टैंक बनाकर पानी को उसमें संग्रहित या भंडारण कर जमीन के नीचे भूजल में पिलाने का जो काम होता है उसको वर्षा जल संग्रहण एवं संचयन का काम हम कहते हैं। और ये बहुत ही आसान विधि है जो हम अपने छतों के माध्यम से बारिश को नीचे ट्यूबवेल के अंदर में संग्रहित कर सकते हैं। वैसे ग्रामीण स्तर में भी हम वर्षा जल संग्रहण का संचयन का काम परकोलेशन टैंक रिचार्ज वेल, आम भाषा में यदि बोला जाए तो सोक्ता, जो काफी हमारे देश में पुराने समय से ये पद्धति चली आ रही है और हम उसके माध्यम से जल संरक्षण का काम जो है बहुत अच्छे से कर सकते हैं।
1: विपिन जी, जैसा कि सभी लोग जानते हैं हमारे देश के जो कुछ महानगर हैं वहां पर यदि पानी की बात करें तो स्थिति बहुत विकट होती जा रही है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी हम ये देखते हैं कि गर्मी के दिनों में कई इलाकों में पानी की समस्या का लोगों को सामना करना पड़ता है। इसकी क्या वजह है और इस समस्या का निदान क्या है?
0: भूजल स्तर का गिरने का सबसे बड़ा कारण है वहां का शहरीकरण
1: जी,
0: वहां का कॉन्क्रीटीकरण
1: जी,
0: और उचित जल प्रबंधन का ना होना
1: जी।
0: और इसका एक बहुत अहम कारण वो भी है कि बहुत ज्यादा भूजल का दोहन करना और भूजल के दोहन के अनुपात में रिचार्ज का कम होना
1: जी।
0: वैसे ही हमारे छत्तीसगढ़ में रायपुर प्रदेश की स्थिति दिनों दिन खराब होते जा रही है, क्योंकि यहाँ पर शहरीकरण बहुतायत मात्रा में हो रहा है, कॉन्क्रीटीकरण खूब हो रहा है और ट्यूबवेल खनन का काम बहुत ज्यादा हुआ है, उसके अनुपात में वाटर कंजर्वेशन का काम बहुत ही कम मात्रा में हुआ है। जब हम ट्यूबवेल खनन का काम करते हैं वाटर का एक्सट्रैक्शन होता है तो उसके ठीक अनुपात में ही हमको वर्षा जल का भंडारण जमीन के अंदर करने से हम भूजल की स्थिति जिसे ग्राउंड वाटर डिप्लीशन करते हैं उसको हम बहुत अच्छे से ठीक कर सकते हैं।
1: विपिन जी, जब हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात करते हैं या वर्षा जल संचयन संरक्षण की बात करते हैं तो एक आम आदमी को लगता है कि कोई एक बहुत बड़ी चीज है ये
0: जी।
1: तो एक आम आदमी जिसका छोटा घर होता है जो जल संरक्षण के लिए बहुत बड़ा सेटअप नहीं लगा सकता
0: जी, जी।
1: बहुत ज्यादा व्यय नहीं कर सकता वो
0: जी, जी।
1: वो इसमें कैसे अपना योगदान दे सकता है? कि हम ये भी देखते हैं कि जो जल है कई बार ऐसा भी होता है जैसे एसी का पानी है हम उसका दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं
0: जी, जी।
1: तो ऐसे वो पानी का रीयूज करके उसका दोबारा इस्तेमाल करके भी वो पानी की बचत कैसे कर सकता है?
0: जी जी, पानी का दोबारा उपयोग बहुत ही मायने रखता है
1: जी।
0: क्योंकि इजराइल जैसा जो देश है
1: जी,
0: वो केवल रिसाइकल ऑफ वाटर में ही वो अरबों खरबों लीटर पानी को बचाकर उसको अपने खेतों में और अन्य कारणों के लिए उसको उपयोग में लाता है।

वैसा हम यहां पर यदि उस सोच के हिसाब से काम करें तो हम काफी पानी बचा सकते हैं। एक सामान्य व्यक्ति यदि अपने घर में वाटर कंजर्वेशन का काम करना चाहती है तो वो बहुत ही आसान प्रक्रिया है। पुराने समय में हम 3 फीट गोलाई का ऐसे 6 फीट गहरा गड्ढा करके उसमें जो सोख्ता बोलते हैं वैसा सोख्ता खुद ही बना सकते हैं। ऐसा सोख्ता बना करके वाटर कंजर्वेशन का काम अपने घरों में कर सकते हैं। और वैज्ञानिक पद्धति से यदि आप करना चाहें तो आपके छतों से जो पीवीसी की पाइप नीचे उतरती है उसमें एक वर्टिकल फिल्टर का इंस्टॉलेशन होता है और फिल्टर के बाजू में एक वॉल्व लगा रहता है जिससे पहला बारिश का पानी जो छत में

0: जल की समस्या का जो
1: जी
0: गिरता स्तर है
1: जी जी
0: उसकी समस्या का सामना लोगों को करना पड़ रहा है,
1: जी
0: इसकी
1: जी
0: क्या वजह है?
1: बारिश का पानी जो जमीन में गिरता है, जैसे आम लोगों का सोचना है कि बारिश का पानी मिट्टी में गिरते ही वो जा करके नीचे जमा हो जाता है, उसका भंडारण हो जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पानी की प्रक्रिया को उतने जमीन के नीचे में जा करके जमा होने में कई साल लगते हैं, और आज जो हम भूमिगत जल को हम जो दोहन कर रहे हैं, ये कई वर्षों की जमा पूंजी है, जिसको हमने बहुत ही बेतरतीब तरीके से ट्यूबवेल खनन कार्य करके उसको बहुत ही कम समय में उसके भंडारण को हमने खाली कर दिया है। ऐसे वर्षा जल को जाने में मिट्टी के माध्यम से बहुत अधिक समय लगता है, और बहुतायत मात्रा में जमा होने के लिए उसको कई वर्षों लग जाता है। और दूसरा कारण ये है कि वहां के भूजल स्तर का नीचे जाना, क्योंकि वहां पर भूजल जो दोहन है ग्रामीण स्तर में सबसे ज्यादा होता है, 85% भूजल का दोहन ग्रामीण स्तर में होता है। एक किसान जो अपने खेत के अंदर में ट्यूबवेल लगाता है, वो घंटों उस ट्यूबवेल को चालू करके रख देता है, जिससे बहुत ज्यादा दोहन होता है, और उस अनुपात में वहां पर रिचार्जिंग की प्रक्रिया नहीं हो पाती है, तो जो वाटर बैलेंस है वो प्रॉपर नहीं होने की वजह से वहां पर ग्राउंड वाटर डिप्लीशन अब शहरी के क्षेत्र के अनुपात में ग्रामीण क्षेत्र में हमको बहुत ज्यादा देखने को मिलती है।
0: देखिए, आपने कहा कि किसान ट्यूबवेल लगाते हैं, लेकिन खेती के लिए सिंचाई भी जरूरी है, क्योंकि यदि सिंचाई नहीं करेंगे तो फिर वो कैसे उनको फसल
1: जी
0: की पैदावार होगी। लेकिन हाँ, भरपाई भी जरूरी है। तो जो हमारे किसान भाई हैं, वो कैसे उस जल को, वर्षा जल को वापस पहुंचा सकते हैं? उनके लिए क्या आसान उपाय हो सकता है?
1: मैं किसान भाइयों से यह कहना चाहूंगा कि यदि आपके क्षेत्र में भूजल की स्थिति बहुत खराब है, आपके ट्यूबवेल में पानी बहुत अच्छे से नहीं आ पा रहा है, तो आप फसल चक्र परिवर्तन की ओर ध्यान दें। ऐसे फसल को आप अपने खेतों में लगाएं जिससे पानी ज्यादा नहीं लगता है, ऐसे आप वाटर बैलेंस आप कर सकते हैं। हर किसान को मालूम होता है कि उनके खेतों में पानी किस कोने में भरता है, कहाँ पर उसकी ढलान होती है, कहाँ पर उसका एकत्रीकरण होता है, तो उस जगह में वो एक बड़ा सा डबरी बना दे। वो डबरी बना देने का फायदा इतना ज्यादा होता है कि जितना पानी आप अपने ट्यूबवेल के माध्यम से खींचकर आप फसल उगाने में खर्च करते हैं, उससे लगभग आधे से ज्यादा पानी जो है आप डबरी के माध्यम से ग्राउंड वाटर रिचार्ज करके उसकी भरपाई कर सकते हैं।
0: एक बात और है, जैसे सरकार भी कह रही है, जो सरकार ने अभी अभियान चलाया है, जल शक्ति अभियान, कैच द रेन, तो इसमें सामुदायिक भागीदारी की बात हो रही है। अकेले सरकारी प्रयासों से
1: जी
0: इतनी
1: जी
0: बड़ी चुनौती से हम नहीं निपट सकते हैं, तो जल संरक्षण में जन भागीदारी कैसे हो सकती है?
1: जल संरक्षण में जन भागीदारी बहुत ही अच्छे से हो सकती है।
0: जी
1: हम जो है किसानों के बीच में जाकर उनको प्रोत्साहित कर एक जन आंदोलन के माध्यम से लोगों को जन भागीदारी में जोड़ करके विभिन्न प्रकार के जो वाटर रिचार्जिंग स्ट्रक्चर है उन गांवों में बनाकर बारिश के पानी को हम रोकने का काम कर सकते हैं। जैसे कि एक लंबा हमको ट्रेंच बनाना है, मान लो 2 किलोमीटर का ट्रेंच बनाना है, उस
0: जी
1: 2 किलोमीटर के ट्रेंच में यदि किसानों की भागीदारी हो जाए तो उससे हम लाखों लीटर पानी उस ट्रेंच के माध्यम से, या परकोलेशन पिट जैसे स्ट्रक्चर बनाकर, या रिचार्ज वेल जैसे स्ट्रक्चर बनाकर, या रिचार्ज पिट जैसे स्ट्रक्चर ग्रामीण स्तर में या शहरी क्षेत्र में भी जन हम अरबों खरबों लीटर पानी बचाने का काम कर सकते हैं।
0: अंत में हम चाहेंगे कि हमारे जो श्रोता बड़ी तादाद में इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: मैं लोगों को यह कहना चाहूंगा कि एक बहुत ही सिंपल प्रक्रिया मैं आपको बताता हूं, वो हमेशा आप ध्यान रखिए, और वो है 5 R कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर कंजर्वेशन या वाटर मैनेजमेंट कह सकते हैं। वो पहला R है वो रिड्यूस योर वाटर कंजम्पशन, जितना पानी आप बचाने का प्रयास कर सकते हैं वो कीजिए। दूसरा है रीयूज ऑफ ग्रे वाटर, जितना भी आपके घर में से खराब पानी निकलता है, मुंह धोने का पानी हो गया या सब्जी आप धोते हैं उसका जो पानी हो गया, एसी का पानी हो गया, कूलर का पानी हो गया, आपके वॉशिंग मशीन का पानी हो गया, उन सब पानी को जो है हम कैसे उसका उपयोग अपने घर के अंदर में करें ताकि हम पोटेबल वाटर को बचा सकें। और तीसरा है रिसाइकल ऑफ वेस्ट वाटर, जितना भी वेस्ट वाटर है उसको हम अपने घर के अंदर में कैसे रिसाइकल कर सकते हैं। और चौथा जो आर है वो रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने का आप हमेशा सोचिए, उसके लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर कंजर्वेशन में अपना योगदान दीजिए, अपने घर में कीजिए, लोगों को जागृत कीजिए, और जन भागीदारी के तहत अपने क्षेत्र में ऐसा काम करके एक अनोखा उदाहरण प्रस्तुत भी कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट जो 5वां R है वो रिस्पेक्ट फॉर वाटर, जब तक आप पानी का सम्मान नहीं करेंगे हम पानी बचाने में असफल हो जाएंगे। हमारे सभी धार्मिक ग्रंथ सब में जल को

0: जो है पूजनीय माना है और उसको एक ईश्वरी तुल्य माना गया है। तो जब हम जल को ईश्वरी तुल्य मानते हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि इसे पवित्र जल जो हमें ईश्वर के द्वारा प्रदत्त हो रही है मुफ्त में, उसे हम बचाने का योगदान कर अपने भारत को 2000
1: मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। प्रातः के 9:15 हुए हैं। पेश है फिल्म संगीत। पहला गीत ले रहे हैं फिल्म इंग्लिश बाबू देसी मेम से। आवाजें हैं कुमार शानू और अलका याग्निक की। गीतकार हैं योगेश और संगीतकार हैं निखिल विनय।

आइए अब सुनते हैं अनवर सागर की रचना, संगीत अनु मलिक का है। फिल्म आ गले लग जा के इस गीत को गाया है कुमार शानू और कविता कृष्णमूर्ति ने।

जतिन ललित के संगीत निर्देशन में समीर का लिखा, अलका याग्निक और कुमार शानू का गाया। आइए सुने फिल्म अलबेला का ये गीत।

0: फिल्म संगीत अभी आपने सुना। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगू।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
1: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
0: ये आकाशवाणी जगदलपुर है। प्रातः के 9:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। श्रोताओं, आज हम आपको ले चल रहे हैं 90 के दशक के उस दौर में, जब सिनेमा घरों में एक ऐसी फिल्म आई जिसने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 1 जुलाई 1994 को रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर एक्शन थ्रिलर फिल्म मोहरा की। इस फिल्म के निर्माता थे गुलशन राय और इसका बेहतरीन निर्देशन किया था राजीव राय ने। इस फिल्म की कहानी, सस्पेंस और एक्शन तो कमाल का था ही, और इसका संगीत आज भी लोगों के दिलों पर राज करता है। संगीतकार वीजू शाह की धुनों और जाने माने गीतकार आनंद बख्शी के शब्दों ने मिलकर एक ऐसा जादू रचा जो अमर हो गया। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं पंकज उदास और साधना सरगम की रेशमी आवाज से सजे इस रूहानी गीत के साथ।

श्रोताओं, फिल्म मोहरा की सफलता के पीछे इसकी दमदार स्टारकास्ट का बहुत बड़ा हाथ था। फिल्म में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, रवीना टंडन और

इसके अलावा संगीत की दुनिया में तहलका मचाने के लिए वीजू शाह को प्रतिष्ठित आरडी बर्मन अवार्ड से भी नवाजा गया था। चलिए इस अवार्ड विनिंग म्यूजिकल एल्बम से आपको सुनवाते हैं कुमार शानू की आवाज में दर्द भरा एक और लाजवाब नगमा।

सुरों का ये सफर आगे बढ़ रहा है और जब बात फिल्म मोहरा की आती है तो उस गाने का जिक्र आना लाजमी है जिसने बारिश के रोमांस को एक नया आयाम दिया। अक्षय कुमार और रवीना टंडन की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ने इस गाने में आग लगा दी थी। वीजू शाह का संगीत इतना कमाल का था कि 30 से भी ज्यादा साल बीत जाने के बाद भी ये गाना हर बारिश के मौसम की पहली पसंद बना हुआ है। अलका याग्निक और उदित नारायण की जादुई आवाजों में आइए भीग जाते हैं यादों की इस मखमली बारिश में।

श्रोताओं, आज फिल्म मोहरा की यादों को करते करते हम कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर आ पहुंचे हैं। गुलशन राय की पारखी नजर और राजीव राय के कड़क निर्देशन ने हमें ऐसी फिल्म दी जिसे जितनी बार भी देखो मन नहीं भरता। आनंद बख्शी साहब के लिखे गीत आज भी हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम को विदा कहते हैं इसी फिल्म के एक

0: एक ही फिल्म से। इस कार्यक्रम में अभी आपने सुने फिल्म मोहरा के कुछ गीत। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। प्रातः के 9:55 होने को हैं। प्रादेशिक समाचार अब हम आकाशवाणी रायपुर से रिले कर रहे हैं।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। विधानसभा में मॉनसून सत्र के अंतिम दिन कल विष्णुदेव साय सरकार के विरुद्ध विपक्ष द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव ध्वनिमत से अस्वीकृत हो गया। तेज बारिश के कारण बिलासपुर में बाढ़ जैसे हालात। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान राज्य के कुछ स्थानों में अति भारी बारिश होने की दी चेतावनी। और राजधानी रायपुर में कारोबारी ने अपने परिवार को जहर देकर खुद भी आत्महत्या की। पुलिस को घर से 5 शव मिले। अब समाचार विस्तार से। राज्य विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन कल विष्णुदेव साय सरकार

के विरुद्ध विपक्ष द्वारा 136 बिंदुओं पर लाया गया अविश्वास प्रस्ताव ध्वनिमत से अस्वीकृत हो गया। इस प्रस्ताव पर सदन में 14 घंटे 26 मिनट तक पक्ष विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक होती रही। हंगामे के कारण एक बार कार्यवाही स्थगित भी करनी पड़ी। अंततः रात करीब 2:36 पर अविश्वास प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया गया। चर्चा में पक्ष विपक्ष के 18 सदस्यों ने भाग लिया। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने सदन की कार्यवाही को अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि दिसंबर के अंतिम सप्ताह में शीतकालीन सत्र प्रस्तावित है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना जताई है। साथ ही कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी दी है। वहीं मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश होने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच बिलासपुर में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। नेशनल हाईवे 49 पर कई जगह पानी भरा हुआ है, जिससे आवागमन प्रभावित हुआ है। सरकंडा इलाके में तेज बहाव में बहने से एक बुजुर्ग महिला की मौत होने की खबर है। बिलासपुर शहर के कई इलाकों में सड़कें पानी में डूब गई हैं और घरों में भी पानी भर गया है। रेलवे ट्रैक पर पानी होने के कारण 5 मेमू ट्रेन रद्द कर दी गई, जबकि 3 के रूट बदल दिए गए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बिलासपुर और जांजगीर चांपा जिलों में हुई अत्यधिक वर्षा और जलभराव की स्थिति को गंभीरता से लेते हुए प्रभावित क्षेत्रों में राहत तथा बचाव कार्यों में किसी भी प्रकार की शिथिलता नहीं बरतने के निर्देश दिए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला प्रशासन पूरी सतर्कता और तत्परता के साथ कार्य करते हुए प्रत्येक प्रभावित और जरूरतमंद व्यक्ति तक समय पर राहत और आवश्यक सहायता सुनिश्चित करे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री, भोजन, पेयजल, चिकित्सा सहित सभी आवश्यक सुविधाएं बिना किसी विलंब के उपलब्ध कराई जाएं। राजधानी रायपुर के टिकरापारा थाना क्षेत्र के संजय नगर इलाके में कल रात एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और 3 बच्चों को कथित तौर पर भोजन में जहर देकर मार डाला और बाद में उसने खुद भी आत्महत्या कर ली। मिली जानकारी के अनुसार ये व्यक्ति पुरानी बैटरी की खरीदी बिक्री का कारोबार करता था। पुलिस ने मृतकों के शव बरामद कर जांच शुरू कर दी है। आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ईओडब्ल्यू ने कोल लेवी मामले में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल को कोर्ट में पेश कर 22 जुलाई तक की रिमांड हासिल की है। एजेंसी ने कोर्ट को ये बताया कि कोल लेवी मामले में रामगोपाल अग्रवाल को 104 करोड़ रुपए मिले थे। आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ईओडब्ल्यू ने कोल लेवी मामले में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल को कोर्ट में पेश कर 22 जुलाई तक की रिमांड हासिल की है। एजेंसी ने कोर्ट को ये बताया कि कोल लेवी मामले में रामगोपाल अग्रवाल को 104 करोड़ रुपए मिले थे।

0: गया अविश्वास प्रस्ताव ध्वनिमत से अस्वीकृत हो गया। तेज बारिश के कारण बिलासपुर में बाढ़ जैसे हालात, मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान राज्य के कुछ स्थानों में अति भारी बारिश होने की दी चेतावनी। और राजधानी रायपुर में कारोबारी ने अपने परिवार को जहर देकर खुद भी आत्महत्या की। पुलिस को घर से 5 शव मिले। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप 11:55 पर सुन सकते हैं। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। प्रातः के 10 बजे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम आजी जो सगा। इसमें सुनिए डॉक्टर जयमती कश्यप से ली गई भेंट वार्ता। भेंट करता है बलबीर सिंह कच्छ।
2: रेडियो सुन तो भाई बहन मन के खुबे खुबे सेवा जोहार। भाई बहन मन जसन की आज ही चुसगा ये कार्यक्रम ने असन कई बल्ले ने कहा कि प्रतिष्ठित जोन समाज का जे कहीं काम कर सो नाल खुद चुका जे जोन बल्ले समाज ने प्रतिष्ठा मेरे से असन लोग मन जो मेहनत मसागत ने आगे बाढ़ सोत असने से मैं गोड बात करें से भले ने आपन मन के जान लेने अचरज बद लागे दे भले ने आज ही चू मैं गोड बात कर तो दीदी आत जे मन स्कूल केवे नी गला ससन लागे से आर उन मन चो भले ने डिग्री के सुन लेने भले ने जो मास्टर डिग्री आए किठान करला से मैं नहीं सांगे मानचर उन्हीं मन चो टोंड लिया मी जानवा तो सबले पहले दीदी तू करें से खूबी खूबी जुहार।
3: मैं बोल तुम क्यों करें से जुहार।
2: हाँ हाँ तो सबले आगे तुम चो परिचय तुम चो नाम आरु गांव के जानो खो।
3: मुझे नाम है डॉक्टर जयमती कश्यप और मैं कोंडा गांव ले ही ले से।
2: अच्छा हाँ। तो जयमती कश्यप दीदी दक तुम चो जो जन्म बाड़ा है बोलूगे ये मतलब कहाँ होली।
3: मुझे जन्म बाड़ जो है ना हो तो कजे कारली दंतेवाड़ा बाटी होली से। हाँ फिर मुझे पालन पोषण जो होली नारायणपुर में होली से।
2: अच्छा नारायणपुर ने।
3: हाँ
2: हाँ बोले ने कसन जन्म मारू ये पालन पोषण
3: आमचे थाने बाबा जो है ने हुन मलेरिया इंस्पेक्टर रहे माने हुन ये बाट हुन चो ड्यूटी रहे।
2: अच्छा
3: हाँ ओ आगे मचर छीस तो लोग मन में रहे हुन तो ये बाटे हुन चो ड्यूटी रहे तो यही बाट मचो जन्म होली माने।
2: अच्छा
3: और पाछे फिर हुन सर तो के प्रोजेक्ट सर तो के ना आपस घरे गेला।
2: घरे गेलो।
3: हाँ
2: अच्छा हाँ हाँ तो फिर दक जसन की तुचु जन पढ़ाई वगैरह है बोलू भी उतलो ने कसन होली का कसन पढ़ा लिखा कहाँ कहाँ पढ़ लिखा
3: कसांग लेके खिंडी के दुख चो गोट आए कहीं मतलब नानी सन रेली और मच आया जो ना खत्म हो दिली काई बल कारण में खत्म होली लेकिन खत्म हो दिली तो हुता लेका है आम चो थाने बाबा जो है दूसरा आया आन लो।
2: अच्छा।
3: दूसरा आया आन लो तो हुन आम के आप लो पीला मन असर नी पाल ली तो हम ये बाट उन बाट होलू एक जान गुरुजी रहे हुन चो घरे मके गाय चरा तो कजे दिला तो गाय चरा तो बोला और नानी यानी काई काम बूता बोला है हुंचो सन काम करते रहे मैं उता है तो हुंचो पीला मन के हुन मन पढ़ाते रहत।
2: अच्छा
3: हाँ हुंचो पीला मन के पढ़ा तो के नहीं मके बोले मन तो ये है कि मैं बोले पढ़ ले के होती लेकिन भाई मके तो मौका नहीं मिले तो हुन मन के पढ़ाते रहे घरे उन आप लोग पीला मन के स्कूल ले लेके आप लोग पीला मन के पढ़ाए तान ले मैं झाकुन झाकुन तक के हुन मन के काके काय बल सोत। एक जान उनचो बेटी रहे पहली में एक जान तीसरी में रहे तो उन मन के पढ़ाए तान ले मैं उन मन के पहली भी ती तान ले दके कि ये के आ अनार के आ काके बल सोत आम के आ काके बल सोत बल सुनते रत रहे और फिर गाय बाट गेले के तरेती रहे से कुदूर में उनके फिर लिख तो आए असन बनाओ सो तो उनके अनार के आ बल सो ये के असन बनाओ सो तो उनके आम के आ बना सो बोलते तो उतार रहते रहते मतलब मैं 4-5 साल उन मंचो घरे रह ले तो हुन उललदा ये ताले जगदलपुर ले औपचारिक केतर चलते रहे हुन गुरुजी हुता बले मतलब उनके ड्यूटी देव रहो गोटो केंद्र चलाते रहे हुन हुता तो उन्ही गांव में मैं जिन गांव में रहे नहीं उन गांव में नहीं चलाए थे दूसरे गांव में है।
2: अच्छा
3: हाँ तो दूसरे गांव में है तो उदलता पढ़ते लोग बल्कि कमी चरत होती।

0: तो एक केंद्र ले शायद ने 20 जान जो कैंडिडेट होते और जरूरी रहते रहे काय थे,
1: हाँ
0: लेकिन उन्होंने जो 20 जान बोल नियम मरते रहो,
1: अच्छा
0: तो हूं फिर मक के बोलो अले तू चो के बोल भरून दे दे पांचवी में बोलो।
1: हाँ
0: तो मैं बोले मैं तू नहीं जाने गुरुजी,
1: हम्म,
0: लेकिन हुन बोलो कि तू लिखुक जानीस
1: जान
0: बोलो,
1: अच्छा
0: ताहले मके खूब हरीक लागली।
1: हाँ
0: हाँ मैं बोल लिखुक जाने बोलते,
1: अच्छा
0: फिर उताले खिंडिक मचो मन में आत्मा बली ली
1: हाँ
0: कि मैं पढ़ुक सकें दे।
1: सकेंडे अच्छा
0: तो फिर हुनी मन लगले सलाह धर ले कि डेकी आगे जो पढ़ाई कसन करते रहे, हुन जो बेटी बोले उन तीसरी बीती बोले आठवीं अमर ली, तो हुन जो किताब कापी रहे
1: हम्म,
0: तो हुनके बोलो कि ये के पढ़ लीस जाले तू के पोरू नहीं परिहार के तू के आठवीं में बस आए थे बोलो।
1: अच्छा
0: तो हुन जो किताब कापी के उतारून बाते गाय बाट धरून जाए मैं
1: हाँ
0: हुनके।
1: अच्छा
0: हाँ उदले तो गाय चरा तो कज बोले खूब अच्छा जगह रहे गाय
1: हाँ
0: मन अपने चरो,
1: चलो
0: मैं बस उन बाते उनके पढ़े।
1: हाँ
0: और रात ही बेरा बोल हुनी बाट ले दारू आने मुंडी में बोन
1: हम्म,
0: और आई जर धरा उन बाते उन तो सब खाउन पीउन सो।
1: सो अच्छा
0: हाँ मैं बढ़िया आई धरम धरन होता कोयला में लिक धरे लिक धरे।
1: अच्छा हाँ
0: और फिर उनमें उठ लो पहले ले फिर मैं उता लिपा पोता करूँ सब सरा बड़ा करूँ दे उड़ते रहे चुक चुका।
1: अच्छा
0: हाँ और रात बेरा पक्की कोयला में लिके
1: हाँ हाँ
0: भूए भूई में
1: अच्छा
0: लिके।
1: अच्छा
0: हाँ
1: हाँ हाँ
0: तो उताले आठवीं पास कर ले,
1: हम्म,
0: फिर आठवीं पास करून भाती 2 साल फिर थे बुन भाती 10वीं चो परीक्षा दिले, फिर 2 साल थे बुन भाती फिर 12वीं चो दिले, फिर हुताले 12वीं पास करून भाती बीए में फिर तो लगातार प्राइवेट देउकलाय पड़े से।
1: हाँ
0: हाँ गेप करुकलाय नहीं पड़े,
1: हाँ
0: तो गेप सेकंड ईयर में रहे यार शिक्षा कर्मी जो भर्ती बीती इली,
1: अच्छा
0: तो हुन भर्ती बीती में फार्म भर ले
1: हाँ
0: तो मैं गुरुजी बल बन ले।
1: अच्छा
0: हाँ
1: हाँ
0: गुरुजी बनुन भाती फिर हुन बाटे एक अच्छा होली मतलब अलग से मचो रतो ठिकाना ठान सब होली।
1: होली हम्म,
0: हाँ तो हम तो पढ़ते फिर हुन बाटले पढ़ुकले मुरियाले और केबे नी छांड ले पढ़ाई के।
1: हाँ हाँ
0: हाँ हर बार पास होते गेले काई कितरो बल दिक्कत होले पढ़ाई के नी छांड
1: चिंत
0: ले
1: हाँ
0: पढ़ते गेले
1: हम्म,
0: फिर उताल नारायणपुर में एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते रहे, फिर उताले पाछे प्रमोशन होली मचो वर्ग 2 में
1: हाँ
0: कोंडा गांव बाट सुकुरपाल में ही ले।
1: शुक्र अच्छा
0: हाँ सुकुरपाल में ही ले सुकुरपाल में बल रहे ताले फिर एता आईसीडीएस बीती बाट ले सुपरवाइजर जो परीक्षा बीती ली
1: हाँ हाँ
0: तो व्यापम ले तो हुनके भर ले तो हुता पास हो ले।
1: अच्छा
0: हाँ हुता पास हो ले तान ले हुता ले फिर ये बाटी ले आईसीडीएस में सुपरवाइजर में
1: सुपरवाइजर
0: ये
1: में
0: भी मैं कोंडा गांव में सुपरवाइजर में आसे।
1: अच्छा
0: हाँ
1: हाँ, तो ये तो खूब अच्छा बल तो जो जो मेहनत जो फैलाए मिरली बल तो जो जीवन काज किनिक आसरा आसन होली मंत्र तक आगे जो बल्ले ने पढ़ाई है कॉलेज जो पढ़ाई फिर ये कसन होते गली
0: ये तो मतलब काम बूता तो करतो रही चाहे नहीं ड्यूटी तो आप लोग करतो रही चाहे
1: करते
0: करतो, फिर उन समय के बचाउन भाती मैं पढ़ाई के नी छांड ले। हर साल परीक्षा देते जेले जेथे गेले एबे फिर उन चो बात है मके खिंडिक मन रहे कि नहीं ये ताले बोल नहीं कॉलेज में पढ़ा तो पीला मन लग के पढ़ा तो बीती मिर्ती जाले
1: होती
0: होते है, पर
1: अच्छा
0: उन चो बाट कौन बाट आए।
1: हाँ
0: हाँ ये चो जा तो बाट कौन भूता जा तो बाट कौन बाट आए,
1: हाँ
0: तो फिर नहीं पूछ ले कौन कौन मन जान लो लोग मन के,
1: हाँ
0: तो बोला नहीं पीएचडी कर ले के उता जाऊ रुखोई से।
1: हाँ
0: तो मैं बोली हुन चो कसन कसन कर तो राय, तो
1: हम्म,
0: फिर उन मन बल्ला कि नहीं ये के प्रीफाइड दे पड़े से उता पास होले के फिर उता फार्म भरू पड़े से। मैं उसने उसने उन्होंने बोला उसने उसने करते गेले तो उता रविशंकर विश्वविद्यालय में मौके जगह मिर ली और फिर मैं पीएचडी कर ले और आगे ले तो मैं 8-8 विषय में एमए करू रहे।
1: आठ ठन विषय ने
0: हाँ
1: हाँ
0: और फिर पीएचडी कर लो पाचे फिर कर ले ए दाय मच अलग 10 विषय में एमए आसे
1: हाँ
0: और फिर लोक कला में तो ये वो एताबल कर ले बादल में
1: हाँ
0: कंप्यूटर में बल कर ले
1: हम्म,
0: या सीख तो भी थे और फिर पीएचडी बल कर ले और फिर डीएड बल कर ले से मैं।
1: अच्छा
0: हाँ तो सीख तो कज का ऐसा कहाँ ले बल सीख उकलाय
1: शुक्र
0: मीरो
1: हाँ
0: बलते नहीं मैं सब आए के मतलब जहां जहां मौका मिल ले
1: हाँ हाँ
0: होता सीख तो कज गेले
1: हाँ
0: और
1: हाँ
0: खेटे मेहनत तो लागे से
1: लग
0: होती।
1: हाँ हाँ
0: हाँ तो एबे मचो आगे तो मके साहब कौन ही बोले
1: हाँ हाँ
0: लेके आए बोलते कहीं नहीं पत्याते रहो
1: हाँ हाँ अच्छा
0: ओ,
1: हाँ
0: ये भी पढ़े लिखे होले नहीं
1: हाँ
0: और डॉक्टरेट बल कर ले
1: हाँ
0: तो सपाए

0: बच्चों समाज जो लोग बोले, ऑफिस जो लोग बोले, सपाई लोग मके खिंडी के समान बल दे सो कि नहीं हाँ अच्छा है ये लड़की लेकी अच्छा है बलते आगे कोनी पूछ तो सन बल नहीं रहे
1: नहीं
0: लेकिन ये शिक्षा जो है नहीं मके जीवन दिली और समाज में एक जगह बलती
1: जगह बोले। हाँ हाँ तो जयमती दीदी ये सांग जसन की तुम बोले ने जो डिग्री मन धरली से बोले काय काय विषय ने जो मास्टर डिग्री होली से
0: मचो सबसे पहले होली इतिहास में कर ले फिर हिंदी में कर ले फिर नहीं राजनीति में कर ले फिर उताले ने ग्रामीण विकास हो से होता उसमें कर ले फिर समाज शास्त्र में कर ले
1: अच्छा।
0: फिर कर ले लोक प्रशासन में कर ले फिर अर्थशास्त्र में कर ले फिर नहीं संस्कृत में कर ले
1: अच्छा
0: हाँ।
1: तो इतलो बल्ले ने विषय मैंने तुझो हाँ बल्ले ने जसन के भी तु बल्ले से लोक संगीत ने बल्ले हाँ, डिप्लोमा
0: हाँ लोक संगीत में बोले था बादल में
1: बादल में,
0: बादल में खेरागढ़ चुआई बलून हाँ, भाती बल्ला ताले एक बोल सीख तो मतलब मचो गाना बजाना में बोल खूब आम जो मन आसे जान लेकिन सीख तो जगह ही मिर ले
1: हाँ, हाँ,
0: तो ये पाठ बल्ला ने तो सीख तो राय मने सीखा सोत बोलते
1: हाँ, हाँ,
0: तो मैं बोले आम चौसन लोग के बल सीखा से बोल पूछो के उ रहे हाँ आम चौसन बोल लोग के बोल हाँ सिखाऊ दे बल्ला ताले मैं बोल ये बोल खिंडी सीख लेके पढ़ती बलून भाती ये बोल सीख ले दो ही साल
1: अच्छा
0: हाँ।
1: तो ये तो अच्छा गोटा है बल्ले ने कहा है कि दक गोट बात करूँ तो जो शिक्षा के बल जान लू मानतर लोक संगीत जो डिप्लोमा कर लिस तो कहीं बोले गीत सुरता से कहीं सीख लो भी थी मन कहीं हल भी भतरी कहीं गोंडी
0: गोंडी में बल हम जो लगने गोंडी में
1: हाँ हाँ
0: कलश बरसोत
1: कलश
0: कलश बिहाव दिन
1: बिया दिन हाँ
0: कलश भरसोत
1: हाँ
0: उतना नहीं बेटी माई मन चाम चो समाज में खूबे सम्मान
1: हाँ हाँ
0: है ना जब तक बेटी माई मन नहीं दे नहीं
1: हाँ
0: तब तक काई काम नहीं होए
1: हाँ
0: तो हुता कलश भरसोत हुता जो गोटो गीता से मच लगे
1: हाँ हाँ
0: तो उन मन गीत गाऊत दूल्हा के या दूल्ही के सामने बस उन भाते
1: हाँ हाँ
0: तो कलश भर तो कजे कोंडी में कल धान या चाउर काई भर तो कजे उन मन गीत गाऊत तो माए भी तिया नुआ धान भीतर ले
1: हाँ हाँ
0: पर उन भरुचे नुआ
1: हाँ हाँ
0: तो असन भी फिर जब तक उन जो बहन नहीं है नहीं
1: हाँ हाँ
0: तब तक उन भरुचे नुआ
1: अच्छा हाँ अच्छा
0: असन आए
1: हाँ
0: तो उन जो गोटो गीत सांगे दे आप बन के
1: हाँ
0: रे रे ला रे ला रे ला

0: के आए, हसन
1: हम्म,
0: बीती है, मतलब हुन बले से
1: हाँ
0: गाना गीत में बलसोत कि तू चो कल सा तो नी भरली से नोनी या बाबू, तू चो कल

0: तोखे खाई असन अड़नाप चीपा कहीं अटकनी असन मंजिन इली यार कसन तुई लड़न बाती तुई आगे बढ़ लीस से के बोल के नहीं
1: ये
0: जाने।
1: मतलब ना समाज में काम करते खूब अड़ना यही से
0: हाँ
1: हाँ खूब अड़ना मतलब आम लोग बोलकर सो और कहीं खूब विपत्ति है से मचे लोग सबसे ज्यादा पैसा जो विपत्ति रहे कि मके पैसा नहीं मिलते रहे जसन की फार्म भर तो रहा है का नहीं तो लुगा पाटा धर तो रहा पांचवी पढ़ई परीक्षा दे उकलाई जाऊ रहे हैं तो गांधी पटका के पिंदू जाऊ रहे हैं गोटो का गांधी पटका कसर ओडू रहे हैं गोटो के पिंदू रहे तो होता नहीं सब जन्मों के हाँस होत कि ए दे ये मतलब असन पिंदुन भाती परीक्षा देव के लिए मुझे लोग तो नहीं रहे यार मैं जानते बल नहीं रहे तो हूं चुपा अच्छे नहीं मके कपड़ा लता चोल खूब दिक्कत रहे लेकिन नहीं मैं सब काम कर सके उदलता है बोले रोड में वो डामर टायरिंग करते रहो साहब ने होता नानी पीला मन के झाड़ू लगा तो कह देवत ढाई रुपये पैसा देवत मैं रोज जाए
0: अच्छा
1: जब बड़ा तो कहे रोड किनारे किनारे बड़ा उगती आ रहा पक्की दिन भर कितरो घाम काई हो बसु बसु बड़ा तो रहा उन मन के उता बल में काम कर ले फिर ट्रैक्टर मन में खाद भर तो रहा रेती भर तो रहा ईटा भर तो रहा उनमें बोले जाए और कहा बोले जंगल चो लकड़ी पाटा आंतर तो मचो आए छे गोदी खनुक जाए पान टोड़ जाए मोवा टोरू टोरा बेचुक जाए लेकिन जाचो घर बल जाते रहे उन मन के दे और उन मन के बे मके दिला जल दे नाल लेके नहीं दे जैसा घरे तू आम चु घर तो नहीं आए काचो बल घरे रहते रहे काचो बल घरे रहते रहे कि कौन तो पीला खेला तो कजे संगाला मके कौन तो खाना बना तो कजे कपड़ा लता कजे असन संगाओ पर उन मन जो सब बूता के सारून बाती मैं अपने बाग कुली बाट जाए
0: अच्छा
1: हाँ कुली बाट जाए और कुली बाट ले पैसा आन ले कुनी मन के दे
0: अच्छा
1: हाँ हुन मन के बे मके दिला जाले कसन 10-15 रुपया 20 रुपया दिला जाले हुन के लुकाउन संग औरते रहे
0: अच्छा
1: हाँ फिर मके उन फार्म भर तो कज लागे दे बोलन बात हुन पैसा के फिर निकराए
0: अच्छा
1: हाँ के बे हाट बाजार नहीं जाते रहे मगे क्योंकि कई काम बल नहीं पड़ते रहे और हुन पैसा मन के जो संग उन भाते फिर परीक्षा दे तो कजे हुन के निकराए पाछे
0: अच्छा
1: हाँ
0: हाँ तो जयमती दके कितलो बोले ने अचरी जाए जसन की तुम दूसर बल काम करु बल जाइस तो जितने बल काम करीस जोन बल मेहनत आमी रे तो जोन घरे रहीस तू ता पूरा उनके सौंपन देते रहीस
1: है
0: कि
1: नहीं
0: दक ये बोले ने कितलो बड़े भारी ईमानदारी छो घोट है मानतर दक तू चो जोन समस्या एली तकलीस एली कसनी बोले पढ़ लीस आर जसन की अबे PhD बोले कर लीस तो PhD चो बोले तू चो जोन विषय आए बोली काय रहली
1: मुझे PhD बस एक तो मतलब इतिहास में कर ले और उसमें टॉपिक हम के मैं धर ले बस्तर के परगना बस्तर के परगना इन्हें आम जो मैं बोले पैसा तो मके ही सार तो राय बे तो एक दूसर बीती में कर ले के आम जो लोग मन के काई नी मेरे सीख तो बले बल दून भाती मैं बस्तर के परगना में कर ले मतलब ये था जो आर्थिक व्यवस्था कसन रहे आगे चो सामाजिक व्यवस्था कसन रहे है ये मन चो राजनीतिक व्यवस्था कसन रहे है ये मन का खेती बाड़ी कसन करोत ये मन कहाँ भी कुकने होत ये मन चो रीति नीति कसन रहे ये सब चीज का जे मैं बोले ये बस्तर के परगना चो मैं करूँ आए बलून भाती मके सब लोग बल्ला की नहीं ये कहता काई फायदा नहीं आए कहाँ जाते रुआ लेकी लोग उन बात ही खूबे दूर दूर जाऊ पढ़े दे मैं अरे चो काई किताब कापी नहीं आए कहाँ ले तू के मिरु है मैं बोले मैं तो खोजें दे हाँ मैं तो खोजें दे
0: अच्छा,
1: कहाँ ले बोले बोलून बात ही मैं विचार कर ले कि लिख ले जा ले पैसा तो खर्चा करे से कहा है बोले मचे लोग मन के फायदा हो ये की जानकारी मिलो ले चो काहे कज बोले हम जो समाज जो कहीं लिखित रूप में कहीं नहीं आए जान साहब होने कजे तो मैं बोल ले कि नहीं एक खिंडिक लिख मैं खिंडिक पढ़ी लिखे होले जाले ये मन की खिंडिक लिखू संग लेके आगे जो पीला मन के बोले के बे पढ़े लिखे होला जाल काम यही दे बोलून भाती मैं बस्तर जो परगना ऊपर में कर ले से हरूता ये सब विषय मन के लिख ले से
0: अच्छा
1: हाँ
0: हाँ तो दक ये चो काजे बोलू बे जसन की तुझ गोट ने सांगले ने कई कसन चो जोन बल सलाहकार लाखेने बोले ने सहमत नहीं होते रहा मंत्र तु हिम्मत धर ली सर कर लीस बोले ने कितलो दिन एचो काज लागली कहाँ कहाँ दौड़ बात
1: मतलब 5 साल में एक रुक पड़े से एक झटके कर लेके झटके बल हो 3 साल में बल हो से लेकिन 3 साल जो आगे में नहीं हुए हुन कोर्स पूरा नहीं हुए
0: अच्छा।
1: और आखिरी जो है 5 साल हो अगर हुंचोले बोले नहीं सर डिजाल 1 साल और उन बाटले देश हो तो मतलब विश्वविद्यालय

0: विश्वविद्यालय विद्यालय बाटले
1: हाँ
0: कि 1 साल और तुम मतलब करा से बोलते मचो 1 साल का आय होली कि मके विभाग बाटले अनुमति नहीं मिलो के कारण नहीं 1 साल मचो थे बुन गेली।
1: अच्छा
0: हाँ लेकिन तो क्या है मैं इस नौकरी बल करते पढ़ाई करते रहे तो विभाग ने अनुमति आन से बोले उन भाती बल रहो ताले मके मैं खूब प्रयास कर ले 5-6 बोले नहीं मिल दे तो 1 साल बचो थे बुन गेली तो सफाई मेरा करुण भाती मचो 6 साल लाग ले।
1: अच्छा
0: हाँ 6 साल में मचो होली। हाँ
1: अच्छा
0: हाँ
1: हाँ, तो दक इतलो लंबा समय ने तु कर लीस मानतर, बोले तुचो अनुभव हिसाब ने, तुचो शिक्षा हिसाब ने बोलू बे, बोले ने काय असन लागली तु के PhD करतो के, तुचो मन ने कसन बोले ने लागे से जाले।
0: नहीं मके दाय ने खूब अच्छा लागली मैं मचो समाज में काय काय होई से उन रीति नीति कसन होई से ये सब के खिड़ खिड़ जान ले।
1: अच्छा
0: आगे मैं नहीं जानू रहे ये दाय पक्की जाने से कोनी कोनी अभी मोचे लोग पूछ चुकला हुआ ने कि तुम चो में कसन कसन हो से बोलते अगर आगे का है बोलते हाँ गीत गाओ सो नाच सो तसने जानते रहे लेकिन
1: हाँ
0: हुन चो मतलब काय
1: का
0: हो
1: है,
0: से
1: हाँ
0: PhD कर ले तान ले मके नहीं आम चो समाज चो खूबे चीज मके जानकारी होली देव के कसन पूजा कर तो रहे कौन देव काचो लग चो आए हुन के कसन मनासो कब कौन बेरा मनासो हुन जो काय मान लागे से
1: हाँ
0: ये सपाय मैं ये सब मन के पक्की जान ले
1: अच्छा
0: पक्की जान ले
1: हाँ
0: PhD कर ले तेब जान ले आगे मैं नहीं जानते रहे।
1: हाँ हाँ
0: हाँ
1: अच्छा
0: तो ये का है आगे जलुन भाती मैं समय मिरली जाले कहाँ कहाँ पीला मन के बोले सांगे से दकारे ये हम जो देव भूत वाले असन बीती मनाए
1: हाँ
0: असन मान तो राय
1: हाँ
0: ये हम जो जो रीति नीति जो गीत मनाए ये मन
1: हाँ
0: के गाव तर तो राय ये हम जो संस्कृति है और सपाय मिलुन गाँव तो हिसाब करा से सपाय अच्छा रोवा से बोल तो कभी कभी पीला मन लगे या कोनी जुआन लोग मन बेल मसन गोठियाए से
1: अच्छा
0: मके जानकारी होली से गुनी हुन मन के सांगे से
1: अच्छा
0: ये PhD में मके फायदा होली।
1: अच्छा
0: हाँ
1: हाँ, बोले ने जितलो बोले आम छो जोन बस्तर ने जितलो बोल समाज जसन की परगना बल्ले से, एता चो रीति नीति रसूम सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक व्यवस्था चो गोटो गोटो चीज के बल्ले तुचो ज्ञान मिल ली असन लागे से
0: हाँ मके मिर ली
1: मिल
0: PhD
1: ली।
0: ने उन्हें खोज उकलाई जाए नहीं बस्तर में
1: हाँ
0: सभी सब बांट जाए सुकमा बांट जाए बीजापुर बांट जाए मतलब ये अबुझमाड़ बांट बोले जहां जहां मतलब मके उन चो लिख तो भी थे जानकारी रह तो खोज तो भी थे सब बांट गेले मैं।
1: अच्छा
0: हाँ सब बांट गेले मके सब मना करो तुन बांट गेले आसन हो दे उन बांट गेले अले हो दे चाल हो दे जाने बोले उन भाती नहीं
1: हाँ
0: पर ये बार नौकरी के बल दख तो रहा है आर
1: हाँ
0: हुन बाटे समय मिल जाल एतवार और शनिवार एतवार दिन शनिवार रात के इनी कर तो रहा है
1: अच्छा
0: और एतवार दिन पूछना है समय में खोज बीन करुन भाती रात ले फिर घरे मरत रहा है दूसरा दिन फिर ड्यूटी बाट जाता रहा है
1: अच्छा
0: असन करुन भाती मकुन उनके पूरा कर ले।
1: आसन
0: हाँ
1: अच्छा अच्छा जय मती ये बोल सांग जसन की ये भी जसन की लोग बोले तुक जान ला पहचान ला, बोले ने सामाजिक रीति रिवाज हिसाब ने गोटक समाज ने प्रतिष्ठा बलोली, तो असन कहीं दूसर बाटे बोले ने असन कहीं मार्गदर्शन का जे, नहीं तो कहीं असन सेमिनार असन कहीं बाहरी बोले कोनी जातो मौका मिल
0: हाँ
1: लेसे।
0: मिरली से एक बार ने अमरकंटक विश्वविद्यालय में बोले जनजाति जो लोग मन कजे मन ले बलाउ रला
1: हाँ
0: कि तुम जो साहित्य में काय काय होई से बोले उन भाती तो हुता हुन चो थाने सेमिनार में बोल जाऊ रहे हैं और एक बार दिल्ली में बोल गोंडी जो विषय में मतलब मके बलाउ रहो कि तुम जो भाषा में काय काय होई से एक बचा तो काय करासी असन बोले उन भाती एक दिन एक बार मके मके दिल्ली बल हाक देऊ रहो
1: अच्छा
0: और केबे केबे मतलब साल में एक बार असन बोले रायपुर में बोल बोलाओ सो कोई
1: हाँ
0: कार्यक्रम होलो में कि पिछले बार हो रहे हम जो छत्तीसगढ़ में तो हुता मके छत्तीसगढ़ जो नेतृत्व कर तो का जो मंच में बोल बसा उला
1: हाँ
0: कि एक पक्की ये पक्की जाने साचा गीत गीती जाने से
1: जाने से
0: बोले बोले उन
1: अच्छा
0: बाते
1: हाँ
0: तो मके हुता छत्तीसगढ़ जो नेतृत्व कर तो कज बोले मौका मिरली मैं मंच में बसुन भाती मंत्री मन संगे या बसुन भाती
1: हाँ
0: मैं छत्तीसगढ़ जो नेतृत्व बोले कर ले।
1: अच्छा
0: हाँ
1: हाँ, तो और असन कहीं तुझे लेखन कला नहीं तो कहीं चीज ने पुरस्कार वगैरह से बोल कहीं असन मिरली से।
0: नहीं अभी तक तो कहीं नहीं मिरली से
1: हाँ
0: मैं 2 ठान किताब लिख ले से 1 ठान किताब जो है नन्ना मुया करुन भाती है दिल्ली ले छपली हूँ
1: हाँ
0: सरकारी बाट ले छपली और दूसरा जो है गोंडी में बातचीत बोले उन बाती लिख ले से हूँ बोले छपली से भिलाई ले लेकिन असन पुरस्कार वगैरह कहीं ले नहीं मिरली से लेकिन अबे विचार करें से कि भाषा हम जो खत्म हो इसे भाषा
1: भाषा
0: हम जो भाषा जो है गोंडी बोली जो है वो खत्म हो इसे हुंचे ऊपर में खिंडिक लिख तो भी थी काम करें से कि केबे गीत वसन केबे लोक गीत असन केबे नाटक वसन केबे कथा कहानी असन असन छोटे छोटे

0: अभी लिखे से मैं
1: अच्छा।
0: लेकिन प्रकाशन नहीं होली से
1: हूँ
0: मन की लिखुन लिखुन संगाए से अबे मैं
1: अच्छा
0: हाँ
1: बोले ने संकलन कर तो
0: हाँ संकलन भी थी करें से मैं अबे
1: अच्छा
0: हाँ
1: हाँ तो दक तू इतलो काम कर लिस बोले तुझे जीवना आगे चो जो पीला बेरा चो जीवना के सुख सुरता ऐसे होती और ये भी चो जीवना संगे बोले ने कसन लागे से मन ने कसन लागे से
0: आगे चो सुरता कर लेके मके साहब मतलब सितकाटा मारे से फिर असने कभी हुई लेक तो मैं बाचुक नहीं सके भले से उदलता है ने खूब खूब मैं कर ले सौ तो कजबल जगह ही देते रहो लोग मन का घरे बल पर्ची पर्चा में सौ दे हाँ और तो कजबल लुगा नहीं रहते रहे बिछा तो कज तो कहीं नहीं रहते रहे गोटक लूंगी की जरूरत है वो नहीं लूंगी कित रहे ठंड हो पानी हो काचे घरे अगर भीतरे सोख दिला जाल दिला नहीं दिला जाले उन पर्ची असन पर आठ में सौ देते रहे
1: अच्छा
0: हाँ तो हुदल दाय चो जीवना और ये बेचो जीवना में खूब अंतर मैं अपने आप के बना ले ए दाय तो बढ़िया ले अच्छा रहे से अच्छा जगह पर करुण भाती खाए से उदल दाय चो खूब दिक्कत होते रहे सुरता कर ले के गागुक लोग तो खूबी हो इसे भी भले
1: हाँ
0: माए बाप के खूबी सुरता है इसे लेकिन उनके भूलकुन बात में पढ़ाई कर ले तान ले ये पढ़ाई जो है मके खूब प्यार दे इसे
1: प्यार
0: सब
1: है
0: हाँ
1: हाँ
0: पढ़ाई मके प्यार दे इसे मुनी सब मतलब रास्ता सांगे से ये बाट जाते गलत था ये बाट गेले के अच्छा है बोलून बाती
1: हाँ
0: पढ़ाई छी सा किताब मन मके जानू सांग सो
1: अच्छा
0: हाँ तो मचो ये भी दोस्त बोलाए सहेली बोलाए कोनी बोलाए किताबे मन आए
1: हाँ
0: हाँ मैं खूब ये बाट हूं बार काचो लग खूब नहीं जाए किंडी बोल टाइम मिल ली जाले किताब की धरून बस रुआ
1: अच्छा
0: हाँ हुता ले जो जानकारी मिले से उनके अनुसार ने मके अच्छा लागे से
1: हाँ हाँ
0: हाँ मन के अच्छा लागे से मन था कुरल एक बलगो तो किताब के धरून बस रुआ है डंडी के लिए एकदम आराम लागे से अरे बोलिए पढ़े ले असर मतलब हुन सांगे ससन मके लागे से
1: अच्छा
0: हाँ जिंदगी में मचो नहीं कोनी सगा सहेली कके कोनी मके उतरो प्यार नहीं कर ले जितरो मके किताब
1: किताब
0: मांगे
1: कर ले
0: हाँ और रेडियो संग उ रहे से मचो जसन मैं खिंडी नौकरी लगली नहीं
1: हाँ
0: और नानी असन रेडियो धुर रहे
1: अच्छा
0: उन रेडियो के रोजे सुनो है मैंने
1: हाँ
0: और तुम चेता ले आकाशवाणी चो लोग मन संगे बोले रेडियो में ही आगे इतले गोट बात मचो हो से
1: ऐसे
0: मतलब
1: हाँ
0: गीत सुनतो है ना मन मन चो नाटक काय काय तुम ही करा साथ नहीं
1: हाँ
0: मैं रेडियो में सुनू सुन भारी हरी खोते रहू है
1: अच्छा
0: हाँ ये पीएचडी में बोल मचो नहीं
1: हाँ
0: रेडियो में बोल मके खूब ज्ञान मिरली से
1: अच्छा
0: हाँ
1: हाँ हाँ
0: तो कौन सा दिशा में गेले के काय होई से
1: हाँ
0: उन बार कौन कलाकार रास होते ए ताले मके जानकारी उनके लिखुन संगाते रहे और पास उन बार जान बात खोजते रहे
1: अच्छा
0: हाँ तो आकाशवाणी परिवार जो लोग बोल रहे मचो खूबे आगे जो परिवार मनात
1: अच्छा
0: ये चल बोल खूब मैं सीख ले अभी बोल मैं रेडियो सुने से टीवी टीवा काई नहीं आए
1: नहीं
0: मचे
1: दे
0: लगे
1: अच्छा
0: रेडियो के धरून बाती वाला वो जगदले पूरी लगाए जा काई मन नहीं है मके
1: अच्छा अच्छा हाँ
0: हाँ
1: हाँ दक बोले ने तुझो इतलो अच्छा आम चो रेडियो चो बोले ज्ञान बोले न कहीं ऐसे तुझ जीवना सहायता कर ली
0: हाँ
1: आई कि नहीं।
0: हाँ
1: और सबले बड़े गोट तो यह है कि जैसन की तुझो चिंता के बोले ने लापी गुचा चुका दूर कर तो खा जे जोन पुस्तक जोन पढ़तो भी थी कला है बोले भी ये जोन रुचि आए बोले तू कि इतलो सपा चिंता दुख के गुचाते इतलो बोले ने ऊपर उठा ली बोले भी
0: उठा ली हाँ
1: आई कि नहीं।
0: हाँ किताब मके उठा ली पढ़ाई मके खूबे ऊपर उठा ली
1: हाँ
0: समाज में सबले ऊपर जो है मके संगाली पढ़ाई आए
1: हाँ
0: अगर नहीं पढ़ू रहते साहब तो कहाँ रहते मैं
1: हाँ हम तो आए
0: हाँ तो पढ़ाई जो है ना
1: हाँ
0: पढ़ाई